सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोल शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुम्हारा सारिया का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओ, मैं आ तुम्हारा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महकता। श्रोताओ, कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कहने। तुम्हारा सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अखे पंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहा सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ, ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहा सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है सेहत।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: शादी हुई

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने, इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: खुशी हुई है।
1: दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल फेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
0: मेरा गेम ओवर।
3: चले,
5: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: उस ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर

0: तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: ओह नो,
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो,
5: ओह नो,
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहे सही से।

दोस्तों, जीवन में हर समय एक जैसा बने रहना बुद्धिमानी नहीं है। जहां शांति की जरूरत हो वहां शांत रहिए, और जहां अपने सम्मान व अधिकार की रक्षा करनी हो वहां मजबूत बनिए। हर बात पर कठोर होना भी सही नहीं, और हर जगह चुप रह जाना भी समझदारी नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान समय और परिस्थिति को पहचान कर अपना व्यवहार चुने। याद रखिए, पानी की तरह बनिए। जहां शांति चाहिए वहां शांत बहिए, और जहां रास्ता बनाना पड़े वहां अपनी शक्ति दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। से दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से कार्यक्रम में। सुबह की शुरुआत आप सभी की बहुत अच्छी रही होगी, ये उम्मीद करती हूँ, और अब दिन की शुरुआत को प्यारा बनाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रचिका की। दोस्तों, तो इन्हीं कुछ खास बातों के साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सेहत का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज एकदम से बदल रहा है, तो ऐसे में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आज 9 सितंबर 2026 का दिन, बहुत ही प्यारा सा बुधवार का दिन। जी दोस्तों, तो आप सभी की रूटीन की शुरुआत तो हो ही चुकी है, और उस रूटीन को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये तो हमें सबसे पहले प्लान करना होता है। प्लानिंग के साथ जब भी काम होता है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होता है। जी दोस्तों, तो कार्यक्रम की भी एक अपनी प्लानिंग है, अपना एक रूटीन है, तो आइए उसी रूटीन को फॉलो करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की एक प्यारे से खूबसूरत से मीठे से गीत के साथ। जिस तरह से ये कार्यक्रम मीठा सा है, उसी तरह से ये गीत भी बहुत ही मीठा सा आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूँ दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से, कार्यक्रम कटवाने धर्मशाला से।

तो सो अरिजीत सिंह श्रेय घोषाल की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये गीत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम कट मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। अब अपनी बातचीत का रुख करते हैं दोस्तों मौसम की ओर। तो आप सभी को बता दें इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार क्या अपडेट है वो जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आंखों देखा हाल आप सभी को बताऊं तो दोस्तों बहुत ही प्यारी सी धूप जो है वो खिली है फिलहाल के लिए, लेकिन मौसम एकदम से कब करबट बदल दे कोई नहीं जानता, तो इसलिए सतर्कता हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब धीमी सी पड़ गई है। मंगलवार की हम बात करें तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों के बीच धूप भी खिलती रही, वहीं कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक आगामी 12 सितंबर तक मानसून के धीमे रहने के आसार हैं और इस दौरान प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 13 और 14 सितंबर को मानसून के फिर सक्रिय होने तथा बारिश में तेजी आने की संभावना है। जी दोस्तों, तो ये है मौसम विभाग की तरफ से अपडेट। तो फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों कि मौसम थोड़ा सा भी धीमा पड़ने शुरू हो जाता है, खैर बरसात का मौसम है, बरसात जाने का समय है, धीरे धीरे सर्दियों में हम एंटर होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही मौसम जाता है या मौसम आता है शुरुआती दौर में या आखिरी दौर में, तो आप सभी जानते हैं कि बदलते मौसम में जो है कई बार अगर बीमारी हमें पकड़ ले तो इस तरह से जकड़ती है कि जाने का नाम तक नहीं लेती, बहुत लंबा समय लेती है जाने के लिए। तो ऐसे समय में हमें बेहद सावधान रहना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित। और साथ ही बात करें दोस्तों कि हम थोड़ा सा इस बात से राहत की सांस लेते हैं कि नहीं अब मौसम थोड़ा सा थम गया है, बरसात थोड़ी सी थम गई है, तो क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। तो बिल्कुल दोस्तों हम निकल चलते हैं कहीं भी ट्रिप पे घूमने के लिए, तो एकदम से अगर बारिश हो जाए तो कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाए या नदियों का बहाव बढ़ जाए तो पानी की दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम बिल्कुल भी जो है सतर्कता अपने साथ से पीछे ना हटाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में कब एकदम से मौसम का रुख बदल जाता है कोई नहीं जानता। तो इसी के तरह दोस्तों हमारे कार्यक्रम में भी बातचीत से एकदम से कब मनोरंजन की ओर रुख बदल जाएगा मौसम की ही तरह, ये भी कोई नहीं जानता। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर तराजू मूवी का।

0: तो सुकुमार सानू अलका याग्निक के आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया ये प्यारा सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। 9:20 हो चुके हैं दोस्तों, और अब समय है बातचीत से हटकर कुछ खास जानकारियों का। जी दोस्तों, समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की ओर। उसके बाद फिर से वापिस आएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी बातें, ढेर सारा मनोरंजन बाकी है।
1: 3-4% करने का किया आग्रह, प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रोगी मित्र भर्ती करने पर लगाई रोक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने पर हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान। शिक्षा मंत्री ने कहा, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। और हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सीबकथॉर्न लाहौल स्पीति जिले के लोगों के लिए बन रहा है आजीविका का अतिरिक्त साधन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से राज्य की भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण प्रदेश को करीब 8,000 करोड़ रुपए के वार्षिक वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य की उधार लेने की सीमा को वर्तमान 3% से बढ़ाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4% करने का भी अनुरोध किया, ताकि प्रतिबद्ध देनदारियां पूरी करने के साथ सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई मांगों पर राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के आउटसोर्स पर 1,000 रोगी मित्र भर्ती करने के फैसले पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी ने सरकार की आउटसोर्स कर्मचारी तैनात करने की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमित कर्मचारियों के बराबर काम लेने के बावजूद भी केवल 15,000 रुपये मानदेय पर रखना युवाओं के शोषण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में 290 पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र पर भी रोक लगाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समाज के सभी वर्गों से युवाओं को नशे की दलदल से बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। चंबा जिला की खिरडीधार में आयोजित छिंज मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल व शारीरिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में युवाओं का नशे की ओर बढ़ता रुझान चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भेदभाव करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास किसी पार्टी या विधायक का नहीं, बल्कि जनता का अधिकार है, और राजनीतिक विरोध के चलते किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भाजपा विधायक हैं, वहां जरूरी कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये सम्मान ग्रहण किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने 99.55% साक्षरता दर हासिल की है और गोवा के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य बन गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाहौल स्पीति जिले में हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सीबकथॉर्न फल की तुड़ाई का काम शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार सीबकथॉर्न जिले में स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है।
2: हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों का अनमोल प्राकृतिक खजाना और हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सिवकथोन अब फलतुड़ा के मौसम में प्रवेश कर चुका है। सिवकथोन को अब एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत भी महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान मिली है। इसके फलों से रस, शरबत, तेल और चूर्ण जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कांटों से भरे इस पौधे की तुड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार की नई संभावनाएं खोल रहा है। साथ ही इसकी जड़ें मिट्टी को बांधने और नदी किनारों कटाव को रोकने में भी सहायक है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति समय सुरेंद्र कुमार।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के दावे को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। एक बयान में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बढ़ते कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन और विकास कार्यों की धीमी गति ने जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा लगातार संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के 171 मंडलों सहित करीब 200 स्थानों पर हर महीने स्थानीय मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रही है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि इस योजना से जिला के जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
5: ये एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2,00,000 का बीमा कवर देती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है तथा 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की कुल्लू जिला की सरसाड़ी शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एक आश्रित परिवार को 2,00,000 रुपए की बीमा क्लेम राशि सौंपी। गांव सहिटा निवासी स्वर्गीय दुनीचंद के आकस्मिक निधन के पश्चात बैंक की शाखा प्रबंधक सोनिया नागर ने उनकी धर्मपत्नी खिमी देवी को 2,00,000 रुपए की बीमा राशि का सहायता चेक प्रदान किया। इसी तरह कई अन्य आश्रितों को भी विभिन्न बैंकों द्वारा बीमा सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: मंडी जिले में राजस्व की लंबित मामलों में 22% से अधिक की कमी आई है। इस वर्ष मार्च से अगस्त की अवधि के दौरान जिले में 19,865 इंतकाल किए गए। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को नियमित रूप से राजस्व अदालतें लगाने और पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, सीएम सुक्खू व आधे से ज्यादा कैबिनेट दिल्ली डटी, ड्रॉप हो सकता है एक मंत्री। पंजाब केसरी के शब्द हैं, सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्री बुलाए दिल्ली, कैबिनेट विस्तार पर निर्णय संभव। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर लिखा है, हिमाचल की लोन लिमिट बढ़ाएं, वित्तीय मदद करें। वहीं हिमाचल दस्तक का कहना है, हिमाचल को अपने निःशुल्क विद्युत हिस्से का मिलना चाहिए उचित लाभ। दैनिक जागरण ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुर्खी दी है, हिमाचल में रोगी मित्र रखने पर रोक। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, 5 साल में इस बार सबसे कमजोर रहा मॉनसून, अब तक 10% से कम बारिश, पिछले साल के मुकाबले नुकसान भी करीब 3 गुना कम हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने और उधार सीमा 3 से 4% करने का किया आग्रह। प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रोगी मित्र भर्ती करने पर लगाई रोक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने पर हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान। शिक्षा मंत्री ने कहा, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। और हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सिबक थॉर्न लाहौल स्पीति जिले के लोगों के लिए बन रहा है आजीविका का अतिरिक्त साधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी डेली रूटीन के साथ दिन के शुरुआत के साथ। और कुछ खास सच्ची और अच्छी बातों के साथ। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा चोट अक्सर वही लोग देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, जिसे अपना समझकर हर राज बता देते हैं। कभी कभी वही हमारी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं, जो हर वक्त दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें अकेला खड़ा होना पड़ता है। यहां लोग आपकी मजबूरी नहीं समझेंगे, बस आपकी गलती देखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए हर किसी से दिल लगाना जरूरी नहीं, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों से दूरी ही सुकून देती है और कुछ रिश्तों का खत्म होना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। बस खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंत में आपका साथ आपका अपना आत्मसम्मान ही देता है, ना कि कोई और।

तो सो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। दोस्तों एक बार फिर पूरे देश को हिला के रख दिया एक छोटी सी घटना, छोटी नहीं बहुत बड़ी घटना है, लेकिन आखिर सवाल ये है दोस्तों कि ये घटनाएं कब तक बच्चों के जो है वो जिंदगी लेती रहेंगी। कहीं कोई बच्चा जो है पढ़ाई के प्रेशर से या पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कहीं बिल्डिंग गिर जा रही है, तो कहीं कोई प्राकृतिक आपदा जो है वो उससे फेस होना पड़ रहा है, न जाने क्या क्या समय जो है हमें किस और लेकर जा रहा है। लेकिन एक ही बात, एक ही जो है बात की ओर ध्यान जाएगा कि आखिर ये लापरवाहियां कितनों की जान लेंगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लापरवाही हर किसी सिचुएशन के पीछे, हर किसी घटना के पीछे जरूर देखने को मिलती है। दोस्तों दिल्ली में हुई इस घटना ने फिर से सभी के दिलों में एक डर जो है वो बना दिया है, पेरेंट्स के मन में खास करके। जी दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसी खबर देती है जिसके सामने कुछ पल के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। फिर चाहे वो दिल्ली में हुई घटना हो, नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा हो, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने की घटना हो, जगह अलग है, घटना अलग है, लेकिन इन सभी घटनाओं से निकलने वाला सवाल एक ही है, क्या हम अपनी जिंदगी को उतनी गंभीरता से लेते हैं जितना कि वो डिजर्व करती है। हम अक्सर सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, बाद में परिवार के साथ बैठेंगे, बाद में अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बाद में हमेशा हमारे हाथ में नहीं आता या नहीं होता। ये बात समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। और ये जो दिल्ली में घटना हुई है दोस्तों, जो बिल्डिंग गिरी है, इसके लिए पहले से ही नोटिस मिल चुका था, लेकिन हम इंसानों की इंसानियत देखिए कि पैसे कमाने के चक्कर में हम किसी की जिंदगी की परवाह तक नहीं करते। न जाने कितने बच्चे उस बिल्डिंग में थे जो कि पढ़ाई के लिए दूर दूर अपने घरों से वहां आए हैं, अपने परिवार को छोड़कर। परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, और खास करके बच्चों के लिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, शिक्षा के लिए हम हर एक मुश्किल को फेस करते हैं, अपने बचपन को भी कई बार छोड़ देते हैं, बचपन भी खुलकर नहीं जी पाते, अपनी जो हमारी एक युवावस्था होती है उसे भी हम इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छी जगह तक पहुंचना है, उसी के चलते हम सभी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखने को क्या मिलता है कि किसी के लापरवाही की वजह से न जाने कितने बच्चों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, और फिर भी हम आंखें बंद करके बैठे हैं। सबसे शर्म की बात तो ये है, आपको क्या लगता है दोस्तों, आज जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनकी क्या गलती थी कि घरों से दूर आकर वो उस बिल्डिंग के ऑनर पे ट्रस्ट करके वहां रह रहे थे। दोस्तों ये तो एक एग्जाम्पल है, ये सबक है हम सभी के लिए। खैर गलती किसकी है किसकी नहीं है वो तो लग जाएगा, पता नहीं लगेगा, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इतनी लापरवाही क्यों दिखाते हैं। लापरवाही की वजह से हम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। क्यों? पैसा हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि हम सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो दोस्तों ये बहुत गंभीर सी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हम देख बैठे हैं, और न जाने हमारी अगर आगे भी ये लापरवाहियां इसी तरह से रही, नज़रअंदाजगियां इसी तरह से रही, तो न जाने कितनी और ऐसी घटनाएँ हमारी सामने आने वाली हैं। तो अभी भी समय है, हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, और थोड़ा सा सतर्क और जागरूक इंसान हमें ज़रूर बनना चाहिए।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बात सिर्फ एक हादसे की नहीं की है, ये मैंने आज बात उन सपनों की है जो अपने घर से बहुत दूर जाकर पल रहे थे। दिल्ली के सत्य निकेतन में छात्रावास की एक इमारत की बात हम कर रहे हैं, जो कि कुछ ही सेकेंड्स में इतनी बड़ी इमारत नीचे गिर गई और उसमें बच्चे जो थे वो डर, उन्हें इतना सा एक सेकंड का भी समय नहीं मिला कि वो हेल्प के लिए किसी के पास, किसी के लिए जो है वो चिल्ला सके या फिर मदद मांग सके। तो देखिए दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार इस दौर से गुजरने के लिए मजबूर हो जाते हैं हम, कि समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। किसी माँ ने अपने बच्चे को घर से विदा करते हुए कहा होगा, बेटा मन लगाकर पढ़ना, अपना ख्याल रखना, जल्दी घर आना। किसी पिता ने शायद जाते समय उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा होगा कि तुम्हारा सपना हमारा सपना है। और किसी बच्चे ने घर से निकलते हुए ये सोचा होगा कि एक दिन कुछ बनकर वापस लौटूंगा। लेकिन कुछ सपने घर लौटने से पहले ही थम गए, यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। बच्चे सिर्फ संख्या नहीं होते, हर बच्चे के पीछे एक परिवार होता है, एक उम्मीद होती है, एक भविष्य होता है। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं पढ़ो, आगे बढ़ो, बड़ा सपना देखो, लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा जिस जगह आपका बच्चा रह रहा है वो सुरक्षित भी है या नहीं? वहाँ का जो माहौल है वो किस तरह से है, कैसा है? कई बार बच्चा डर सहम कर भी नहीं बताता। ये तो हमारे सामने एक घटना के रूम में सामने आई ये बात, लेकिन जो घर से दूर बच्चे रहते हैं न जाने वो किस किस तरह का बिहेवियर फेस कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना भी बेहद ज़रूरी है, बच्चों की भावनाओं को समझना। अगर वो कहीं डर रहे हैं, सहम रहे हैं, आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सकें, आपको बता सकें। दोस्तों, ये बातें हमें एक तरह से अंदर से झकझोर कर रख देने वाली हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले एक कोचिंग सेंटर में भी आग लगने से वहाँ पे भी बच्चों की जान गई, वहाँ भी 21 बच्चों की जान गई, और अब ये एक घटना हमारे सामने आई। तो इसमें भी अभी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से मलबा वहाँ से हटाया नहीं गया है, तो अभी तक जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो 6 बच्चों की मौत जो है वो बताई जा रही है। और दोस्तों, न जाने उसमें बिल्डिंग में इतना भी नहीं, अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि उस बिल्डिंग में बच्चे आखिर थे कितने। मतलब अगर हम एक्यूरेट न्यूज़ की बात करें तो वो भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है किसी को कि कितने बच्चे उसमें थे। और कुछ समय पहले एक जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था बच्चों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कि शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए और जो स्कूल्स हैं वो भी सही होने चाहिए, इमारतें सही होनी चाहिए, तो ये भी उसी से जुड़ी एक बात है दोस्तों। लेकिन हाँ, यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जहाँ साथ देने की ज़रूरत होती है, आंखें खोलने की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर बस जो हमें सिखाया जाता है, जो हम करते हैं, बस हम उसी के पीछे चलते हैं। हम बच्चों के ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते, और जो आवाज़ उठाते भी हैं तो उन्हें भी हम भला बुरा कह के दबा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और आपने देखा उस प्रोटेस्ट में किस तरह से जो है लोगों ने मदद की, उन्हें खाना, उन्हें रहन, मतलब उनको हर एक सुविधा प्रोवाइड की जा रही थी। और इस घटना को अगर हम रिलेट करें ना दोस्तों, तो इस घटना में 1 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, इमारत जो है वो ढह गई थी, और लगभग 6 बजे के आसपास जो है वो पुलिस रेस्क्यू टीम जो है सारी वहां पर पहुंची थी। तो सोच लीजिए कि कितना टाइम। तो उसके बीच में 1 बजे के बाद जो है ब्लिंकिट की एम्बुलेंस ने उन बच्चों की हेल्प की थी। कितनी हैरानी वाली बात है दोस्तों कि ब्लिंकिट ने अपनी एम्बुलेंसें वहां पर एट ए टाइम पे पहुंचा के उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया। तो कितनी गर्व की बात है ये, जिन्हें हम उस प्रोटेस्ट में आने से रोक रहे थे, उन्होंने अपनी इस इंसानियत को वहां दिखाया और अपना फर्ज, अपना कर्तव्य जो है वो पूरी ईमानदारी से निभाया। तो यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये पैसा, ये जो हम आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ये सब बातें यहीं की यहीं रह जाएंगी, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ हमें जागरूक होने की।

दोस्तों ये दर्द दर्द नहीं, ये बहुत बड़ा दर्द है जी दोस्तों। ये सिर्फ हम सुन रहे हैं और इसे महसूस कर रहे हैं, तभी हमें ये बातें इतनी झकझोर कर रख दे रही हैं। तो सोचिए, जिन परिवारों के बच्चे उनसे बिछड़ गए हैं, उन्हें किस दर्द से महसूस यानी गुजरना पड़ रहा होगा। 20-21 साल के बच्चे, और उन्हीं में से एक बच्चा तो दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही उस पीजी में आया था, राखी के बाद ही उसने शिफ्ट किया था वहाँ पे, और ये हादसा उन्हें देखने को मिला और उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। तो बहुत ये घटनाएँ जो है दोस्तों, ये समय सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आती हैं ऐसी, जिससे कि हमें ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़्यादा जो है अवेयर होने की ज़रूरत रहती है, लेकिन हम नहीं होते हैं। हम किसी घटना का इंतज़ार करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इस चीज़ को सुधारा जाए, इस पे विचार किया जाए। जब कुछ हो जाता है, बस उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे कि हम इससे पहले हम उस बात पे गौर क्यों नहीं करते, उन घटनाओं को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते। दोस्तों इसमें एक बहुत गर्व की बात ये भी आप सभी को बताऊं कि उन्हीं में से एक बच्चा जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, तो उसके पेरेंट्स ने हिम्मत रखते हुए इतनी बड़ी बात कि अपने बच्चे की आंखें जो हैं वो डोनेट की, किसी और को ज़िंदगी देने की उन्होंने हिम्मत रखी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जिस समय वो अपने दर्द से उभर नहीं पा रहे हैं, उस समय उन्होंने किसी और इंसान की ज़िंदगी के बारे में सोचकर अपने बच्चे की आंखें डोनेट करी हैं। तो यहीं से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों, इस दुख दर्द को समझने की और इससे उभर कर उठने की और ख़ुद को एक अच्छे माहौल की ओर लेकर जाने की। तो हमें ये तो जो इस दुनिया से चले गए उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दोस्तों हम इस पे ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो ये व्यवस्थाएं किसी भी तरह से हो सकता है, जहां कमी है, जहां कुछ हमारी आवाज़ उठाने से शायद कुछ चीज़ें सही हो सकें, हमारा साथ देने से कुछ चीज़ें सही हो सकें, तो हम क्यों आँखें बंद करके बैठे रहते हैं, क्यों हम अपने आप को जो है एक साइड कॉर्नर में बिठा कर रखते हैं कि कोई बोलेगा तो ही हम आगे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम सामने आ गए तो हमारी इमेज जो है सबके सामने आ जाएगी और फिर हम शायद अपने सेल्फिश एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो अपने स्वार्थ से हटकर थोड़ा इंसानियत के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ एक जानकारी की ओर चलते, क्योंकि ये तो ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं और बहुत ही खास बात है दोस्तों ये, लेकिन जानकारियाँ भी बेहद ज़रूरी हैं। दोस्तों अब स्कूल जाने वाला बच्चा भी IIT से पढ़ाई कर सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अपने स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। IIT ने अक्टूबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू की है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। कोर्स 5 अक्टूबर से शुरू होंगे और क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्र इनमें शामिल हो सकते हैं। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है और IIT मद्रास 7 तथा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनके मॉड्यूल तैयार कर रहा है जी दोस्तों। तो बहुत खास बात है और बहुत खास जानकारी है, लेकिन जहां हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए ही पेरेंट्स हों, बच्चे हों, इतनी मेहनत कर रहे हैं, घरों से दूर देश विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में व्यवस्था का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुरक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ बच्चे सेफ महसूस कर सकें, सुरक्षित रह सकें। तो इस पे ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि PG की बात हो, हॉस्टल की बात हो, या फिर रूम रेंट्स की बात हो, हर कहीं धर्मशाला में भी बहुत ज़्यादा रूम्स जो हैं वो रेंट पे दिए जाते हैं, तो मेंटेनेंस हर एक ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, शिकायतें तो जिंदगी से हर किसी को होती हैं, क्योंकि किसी का जीवन पूरी तरह आसान नहीं होता। लेकिन हर शिकायत के बीच उन चीजों को भी देखो जो आपको मिली हैं और जिनके लिए बहुत से लोग आज भी तरस रहे हैं। जो नहीं मिला उसके खुद दुख में इतना मत डूबिए कि जो मिला है असल में उसी की कीमत भूल जाए। जिस दिन इंसान शिकायतों से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना सीख लेता है, उसी दिन उसके मन में शांति उतरने लगती है। जी दोस्तों, शांति और सुकून के लिए हम दर दर भटकते रहते हैं, न जाने कितने ही जत्न करते हैं कि कहीं तो मन को सुकून मिले। लेकिन आज का ये समय इस तरह से हमें पता नहीं किस दौर की ओर लेकर जा रहा है कि ये शांति और सुकून ही हमें नहीं मिल पा रहा। हम इतने ज़्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि सुख सुविधाओं के लिए पैसे कमाना बेहद ज़रूरी है। पैसे तो बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन इतने पैसे कमाने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रकृति से कहीं टूट चुके हैं, उससे छूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। एक असल में जो हमारी जिंदगी का सुकून है वो कहीं खो सा गया है, क्योंकि हम इस भाग दौड़ में अपने आप को कहीं भूल गए हैं। अपने आसपास के इस संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, हम सब चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। हम भाग रहे हैं बस एक दूसरे को देखकर। तो देखा देखी में दोस्तों बस यही चीज़ें सामने हैं, तो तभी तो ये घटनाएं हमारे सामने आए दिन जो है वो नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। और भी हम ज़रूर बात करेंगे, जानेंगे क्यों और किस तरह से ये हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत संगीत। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आज के इस बहुत ही खास बातचीत को आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों ये जो हम घटनाओं की बात कर रहे हैं जो आए दिन हमारे सामने आ रही हैं, तो इन घटनाओं को देखकर डरना हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है जागना। क्योंकि सावधानी डर नहीं है, सावधानी समझदारी है। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। भूकंप आए तो क्या करना है, भूस्खलन की स्थिति में क्या सावधानी रखनी है, बाढ़ या अचानक भारी बारिश में कहां जाना है, आपातकाल में किसे फोन करना है, घर में जरूरी नंबर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान कहां रखा है, ये सवाल केवल प्रशासन के नहीं है, ये हर परिवार के सवाल हैं। बच्चों से एक छोटी सी बात, बच्चों को हम अक्सर कहते हैं मोबाइल छोड़ो, पढ़ाई करो, समय पर घर जा आओ, लेकिन क्या हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि मुश्किल समय में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। बच्चों को डराने की जरूरत नहीं, उन्हें छोटे छोटे प्रैक्टिकल लेसन्स दीजिए। अगर रास्ते में कोई खतरा दिखे तो दूर रहना है, अजनबी जगह पर अकेले नहीं जाना है, आपात स्थिति में माता पिता या किसी भरोसेमंद बड़े से संपर्क करना है, घबराने के बजाय शांत रहना है, और सबसे जरूरी बच्चों को ये सिखाइए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। जी दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के आगे मदद मांगेंगे तो हमें कमज़ोर जो है लोग बोलेंगे। और बच्चों की एक और बात दोस्तों आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी कि आजकल जो है कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे लापता हो जाते हैं, बच्चे स्कूल भेजे हैं तो रास्ते से ही उनका कोई अता पता नहीं होता है। तो जो ये किडनैपिंग की बात करें या फ्रॉड की बात करें, स्कैम की बात करें, तो ऐसे में जो है ना बहुत से लोग इस चीज़ को अपनाते हैं कि बच्चों को बचपना होता है, बच्चों में छोटापन होता है तो वो नहीं समझ पाते हैं असल में। तो उन्हें कुछ भी चीज़ ऐसी दी जाती है खाने के लिए या किसी भी तरह बहलाया फुसलाया जाता है खिलौने वगैरह दे के, और बच्चे उनके साथ जो है वो चल पड़ते हैं। तो कई बार पेरेंट्स बच्चों को जो है कुछ पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं कि किसी से हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है, नहीं हमें किसी के हाथ की चीज़ दी हुई खानी है। तो बच्चे अगर माना कि फैमिली में भी ऐसी चीज़ करते हैं कि कोई उन्हें कुछ दे रहा है, उनके रिलेटिव्स ही हो चाहे, तो वहाँ लोगों का कहना होता है कि कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों को हमारे हाथ से चीज़ तक लेने नहीं देते। लेकिन हमें इसे एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में सोचना चाहिए। हम इस बात को इस तरह से भी ले सकते हैं कि कितनी अच्छी बात जो है पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाई है कि किसी से भी हमें बिना कुछ जाने या बिना कुछ समझे कि कोई चीज़ जो है वो नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम वहाँ भी अपना ज्ञान झाड़ना शुरू हो जाते हैं, अपनी वो एक कह दें ना सोच वहाँ भी दर्शाना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, पेरेंट्स ने तो हमसे चीज लेने से मना किया। अरे बच्चों को ये चीजें छोटे होते ही सिखाई जाती हैं, क्योंकि छोटे होते सिखाई जाएंगी तभी वो आगे चलकर बड़े होकर भी उन चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा सा क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों आजकल जो है अननोन पर्सन से ही नहीं, कई बार अपने भी इन लोगों के साथ मिले होते हैं और न जाने किस किस तरह से किस घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में हर एक इंसान से बचकर रहना, सतर्क रहना कोई बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि समझदारी की बात है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये उनकी सोच की बात है, लेकिन आप अपने तरीके से एफर्ट्स करना कभी मत छोड़िए। आप जितना हो सके बच्चों को सावधानी और सतर्कता सिखाइए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तो सो इंसाफ मूवी का ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और यहाँ के पहाड़ों पर मंडराते पर्यावरण संकट को अब रुपहले पर्दे के जरिए वैश्विक पहचान मिल रही है। प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी चमक बिखेरने के बाद हिमाचली पृष्ठभूमि पर रची बसी फिल्म खूंटा की सोमवार शाम धर्मशाला के होटल धौलाधार में विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान भारी संख्या में दर्शक उमड़े। सिरमौर के शिलाई की रहने वाली अनुषी शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी। इसका उद्देश्य पहाड़ी संस्कृति को दुनिया के सामने लाना और प्रकृति के प्रति कड़ा संदेश देना है। स्क्रीनिंग के बाद फिल्म के निर्माता मुकेश मोदी, अभिनेत्री अनुषी शर्मा सहित पूरी टीम ने मीडिया तथा दर्शकों से संवाद स्थापित किया। तो दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति को ठेस पहुंचाने के चलते ही हो रही हैं। जो नेपाल की बात करें या फिर ये तो खैर दिल्ली की बात तो हम इंसानों की लापरवाही की वजह से है, क्योंकि जब पहले से नोटिस था उस बिल्डिंग को बंद करने का, क्योंकि वो पूरी तरह से 40 साल पुरानी वो बिल्डिंग थी और वहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ जो कि बिना किसी पिलर के खड़ी हैं, उनमें एक भी पिलर जो है वो अभी न्यूज़ सामने आ रही है तो बताया जा रहा है कि इस तरह से बच्चों को वहाँ रखा जा रहा है, बच्चों को वहाँ पीजी हॉस्टल्स में वो सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों घर से बाहर हम पढ़ाई के लिए इसीलिए जाते हैं ताकि हम बिना किसी डर बिना किसी परेशानी के जो है एक शांत मन से एक जगह फोकस कर सकें और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। लेकिन इन सब बातों के चलते पेरेंट्स के मन में भी डर बैठ जाता है और बच्चों के मन में भी एक डर सा जो है वो बैठ जाता है। भले ही घटना वो दिल्ली में हुई है लेकिन ये डर जो है कोने कोने तक जो है वो फैल चुका है। दोस्तों कहते हैं ना होता किसी एक के साथ है लेकिन वो डर जो है वो सबके साथ जो है वो फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें जब सामने आती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रूम रेंट चाहिए, हमें पैसे चाहिए, तो उसी के चलते हम उसे अप्रूव कराए जा रहे हैं। और देखिए गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं है, अगर इसे बहुत ध्यान से देखा जाए तो न जाने कितने ही लोगों की गलतियां होंगी। ये जब घटना सामने आई तो आसपास के लोगों का कहना ये भी था कि बहुत पहले से इन्हें नोटिस दिया गया था और फिर भी ये बच्चों को यहाँ पे जो है वो मतलब रूम रेंट पे दे रहे थे, पीजी को जो है वो रेंट पे दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि हम सिर्फ सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों रहते हैं। अभी जब आप सभी बोल रहे हैं, चलो माना आपकी भी कोई मजबूरी होगी कोई गलती होगी, लेकिन जब आप अभी बोल सकते हैं तो आप पहले भी इस मुद्दे को उठा सकते थे। शायद उन बच्चों की जान बच जाती, शायद वो इस दुनिया में होते, अपने पेरेंट्स के साथ होते। तो हम वही बात आ गई ना कि जब घटना हो जाती है उसके बाद हमारी आंखें खुलती हैं, और कुछ लोगों की तो तब भी नहीं खुलती हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनकी आंखों पे एक लालच की पट्टी बंधी होती है, या यूं कहें दोस्तों आप जानते ही हैं किस किस तरह से बातें सामने आती हैं। तो यहाँ कोई धर्म कोई जाति कोई पार्टी कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक इंसानियत होने के नाते इंसान होने के नाते हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम किसी की जिंदगी की अहमियत नहीं जानते, वैल्यू नहीं जानते हैं। जैसे आपके बच्चे वैसे सभी के बच्चे, बच्चे तो बच्चे हैं दोस्तों, और 20-21 साल के बच्चे अभी तो उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना बाकी था, उनके कितने सपने अधूरे रह गए, कितने न जाने परिवार की उम्मीदें अधूरी रह गई, उन बच्चों का साथ माँ बाप का साथ। दोस्तों बहुत गंभीर सी बात है लेकिन क्या करें, कहते हैं ना अब जब समय हाथों से निकल जाता है तब सिर्फ हम इंसाफ की बात कर सकते हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर सकते हैं, परिवार को न्याय दिलाने की बात कर सकते हैं, बाकी तो खैर समय के साथ हमें भी एडजस्ट करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

दोस्तों, घटनाओं की बात करें तो कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां कोई घटना ना घटी हो। ये प्रकृति की मार हर कहीं जो है हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि हम सभी ने इसका मजाक बना दिया है। जहां हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, वहां हम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से अपना स्वार्थ मतलब ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि फ्री में चीज़ें मिलती हैं इसलिए उन चीज़ों की वैल्यू हम नहीं करते हैं। तो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है फ्री में, तभी तो हम लापरवाह हो जाते हैं और चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। जी दोस्तों, तो नेपाल की भी हम बात करें तो 12 दिन के बाद भी रेस्क्यू करके एक को जो है वो बचाया गया। तो ये एक लंबा दौर चल रहा है घटनाओं का। तो वहीं दोस्तों बात करें इंडोनेशिया की, जो कि मैंने शुरुआत में बात की थी, तो इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट में स्थित अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वो रविवार को अचानक फट गया, जिससे कि आसमान में 50,000 फीट तक राख का गुबार छा गया। ज्वालामुखी की राख के कारण जो है वो, अगर हम सोमवार की बात करें तो इंडोनेशिया के 7 हवाई अड्डे बंद रहे। तो सोचिए दोस्तों कितना भयानक वो मंजर होगा। ज्वालामुखी की राख इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सहित आसपास के इलाकों में फैलने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर सुकर्णो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। जी दोस्तों, 30 सेकंड तक फटी ये ज्वालामुखी। इंडोनेशिया की जियोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार मुख्य जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच सुंडा स्ट्रेट में स्थित इस ज्वालामुखी द्वीप में शनिवार को हलचल के संकेत दिखे थे और सुबह रविवार 3:53 पे 30 सेकंड तक ये ज्वालामुखी फटा। जी दोस्तों, इस घटना ने फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए आसपास के निवासियों और पर्यटकों को सक्रिय क्रेटर से कम 3 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। जी दोस्तों, तो देखिए किस तरह से ये भयानक से खौफनाक से मंजर जो है हमारे सामने अचानक से आ जाते हैं। तो बिल्कुल जिंदगी है दोस्तों, और जिंदगी बहुत ही एक अजीब सी पहेली है जो कोई नहीं समझ सका है आज तक, और शायद ना ही समझ पाए। तो इतनी घटनाओं के चलते कुछ अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ जो है कह सकते हैं कि दूसरा जन्म लेकर जिंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरू करते हैं जीने के लिए। तो यही है जिंदगी का चक्र। लेकिन दोस्तों, अहम अहंकार सब यहीं रह जाएगा। जिंदगी को खुले दिल से एंजॉय कीजिए, किसी से बैर भेदभाव जो है वो सब यहीं रह जाएगा, तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। ना कोई धन दौलत साथ लेकर जाएगा, ना तो कोई भी अपने घमंड को साथ लेकर जाएगा। जी दोस्तों, तो फिलहाल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर।

91.9 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। दोस्तों, जिंदगी में सपनों को बड़ा रखना कोई बुरी बात नहीं है, जरूर रखिए, लेकिन अपने जीवन से बड़ा कोई सपना मत रखिए। कोई कमरा असुरक्षित लगे, कोई इमारत जर्जर लगे, बिजली की वायरिंग खतरनाक लगे, आग से बचने का रास्ता ना हो या कोई गंभीर सुरक्षा समस्या दिखाई दे, तो चुप मत रहिए। मकान मालिक से कहिए, प्रशासन को बताइए, अपने परिवार को बताइए। ये मत सोचिए कि सब लोग रह रहे हैं तो मैं भी रह लूंगा या रह लूंगी। आपकी जिंदगी की कीमत किसी किराए के कमरे से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, धर्मशाला और हिमाचल के अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से भी हर साल बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक फैसिलिटी हमारे गांव में हो, हमारे शहर में हो, हमें बाहर जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। घर से निकलते समय माँ की आंखों में चिंता होती है और पिता के मन में न जाने हजारों सवाल, लेकिन बच्चे कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। आज शायद हमें उस वाक्य का अर्थ थोड़ा सा बदलना होगा। बच्चे अकेले नहीं संभालेंगे, परिवार, समाज और व्यवस्था सबको मिलकर संभालना होगा, तभी हम इन घटनाओं को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, आज का समय ऐसा ही है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है। बस इसी जुनून और हिम्मत के साथ हमें ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ते रहना है। फिलहाल कार्यक्रम में हमें आगे की ओर बढ़ना है दोस्तों, और आइए इसी के साथ लेकर चलते हैं आप सभी को एक जानकारी की ओर। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि कल यानी कि 10 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम कार्य समाप्ति तक जो है वो 63 KV लोअर मोहली और 250 KV लोअर मोहली एक, 400 KV एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मस्जिद के आसपास तथा मोहली और सरीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है, और आप सभी से इसमें सहयोग की अपील जो है वो की गई है जी दोस्तों। तो यानी कि कल सुबह 9:30 बजे से कार्य समाप्ति तक, हो सकता है बारिश हो तो काम नहीं भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी आप सभी के लिए। तो आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो क्या किसी बच्चे की मौत के बाद दोस्तों ये पूछना काफी है कि गलती किसकी थी? नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या हम अगली जिंदगी बचाने के लिए आज कुछ बदलेंगे, आज इसमें कोई बदलाव करेंगे। आज उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को सपनों के साथ घर से भेजा था। उनके लिए कोई सामान्य सुबह नहीं होगी। किसी घर में खाली बिस्तर होगा, किसी कमरे में किताबें होंगी, किसी मोबाइल में बच्चे की तस्वीर होगी और किसी माँ को अब भी इंतजार होगा कि दरवाजा खुलेगा और उसका बच्चा कहेगा कि माँ मैं आ गया, लेकिन वे आवाज अब कभी नहीं आएगी। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ सफल बनाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें सुरक्षित भी रखिए। और बच्चों, अपने सपने के पीछे जरूर जाइए लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पहचानते हुए, क्योंकि सपने दोबारा देखे जा सकते हैं लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो बहुत ही खास बातचीत आज की आप सभी ने सुनी दोस्तों, और इसी बात को यहीं छोड़ते हैं लेकिन एक सवाल आपके साथ जरूर छोड़ कर जाएंगे। क्या हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता देते हैं? सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और अपने अपनों से जुड़े रहिए। जी दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ।

0: अभी क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते जब तक डस्टबिन ना मिले।
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अरे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले,
5: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

सुधि के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए। उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको है? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: ओह नो,
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो,
5: ओह नो,
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तुम क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहे सही से।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: दादी,
1: क्या है?
0: क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करेंगे प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
0: मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

की धूम। उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य

गणपति के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए। उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरे टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तुम क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहे सही से।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.9 द ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ दोस्तों एक नई बातचीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं हर हफ्ते मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, जिसमें कि हम जानते हैं अपनी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम जरूर करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हेल्थ पे पड़ता है। तो आप सभी इस प्यारी से कार्यक्रम में और इस बातचीत में जुड़ते हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: सभी के लिए मतलब कि खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खास मोमेंट रहता है ये हम सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि मैम अपना इतना कीमती समय जो है ना वो हमारे लिए निकाल कर यहाँ तक आते हैं, तो बहुत खास बात है। लेकिन हमें भी इस अहमियत को समझना है और इस समय की वैल्यू को समझना है। तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से इस प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे?
0: बहुत अच्छे हैं। रूटीन कैसी चल रही है?
1: बहुत क्योटिक बट गुड
0: जी। तो मैम मैं थोड़ा सा पहले आपसे आपकी ना डेली रूटीन के बारे में जानने जा रही हूँ, क्योंकि जो आप क्लिनिक में अपने सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फेस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को उस शेड्यूल, उस रूटीन के बारे में बताइए।
1: देखिए मॉर्निंग में भी कुछ हमारे एक्चुअली ऑनलाइन प्रैक्टिस भी है और हमारी ऑफलाइन भी है, तो बेसिकली कुछ जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो मॉर्निंग में भी हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग के दौरान, और क्लिनिक स्टार्ट होता है अराउंड 12, सो फ्रॉम 12 to 6 PM आई एम एट क्लिनिक। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, कुछ सेशंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो कुछ सेशंस काफी लाइट भी रहते हैं। हम हर एक क्लाइंट के साथ एक अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा करते हैं
0: जी।
1: किसी को बहुत हंसाते हैं तो किसी को बहुत रुलाते हैं
0: देख लीजिए दोस्तों कि कितना मुश्किल ये दौर है कि किसी को हंसाना है तो किसी को रुलाना भी है जी,
1: क्योंकि हमारे सारे भाव महत्वपूर्ण है रुचिका
0: जी।
1: तो कई बार ना हम सोसाइटी में रहते रहते हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमारे एक इमोशन तो बहुत अच्छा और बाकी इमोशन तो बहुत खराब है, तो हम खुद ही अपने ही साथ अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। एंड बिलीव मी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनता में आई थिंक मैक्सिमम लोग इस प्रकार के ही सोच रखते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बट उनकी रिलेशनशिप्स में भी। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है थेरेपी सेशंस में, जो उनको हील करने में, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सहायता देगा
0: जी।
1: बस ऐसे करते करते दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, घर जाते हैं तो तब भी कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो बस रात के 9 बजे तक हमारा टाइम सारा सेशंस में जाता है
0: जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की, तो जैसे आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, तो खुद के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे उस समय, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि कुछ क्लाइंट्स को हंसाना पड़ता है तो कुछ को रुलाना भी पड़ता है, उस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार होता है दूसरों को देख के अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं खो बैठते हैं, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं?
1: देखिए जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कब सामने वाले के शूज में जाना है और कब अपने शूज में वापस आना है
0: जी।
1: एक होता है कि अगर आप अपने शूज में ही बैठ के सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो चोट है, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी, जिस तरीके से भी अपने सेशन के फ्लो को एक रुख देना चाहेंगे वो उनके लिए उतना इफेक्टिव या एफिशिएंट साबित नहीं होगा। इसलिए अपने जूते उतारना जरूरी है। जब हम सामने वाले के शूज में जाते हैं तब हम उनके पेन को, उनके दर्द को, उनके अकेलेपन को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कौन सी कड़ियां हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको अनलॉक करना जरूरी है, वो कौन से पीड़ाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप उनकी परेशानियों का आभास ले पाते हैं तब अपने शूज में वापस दोबारा आना पड़ता है और उनके दुख को थोड़े डिस्टेंस के साथ देखना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे डिटैचमेंट, आपने सुना होगा वर्ड, है ना
0: जी।
1: ये है वो वैराग्य जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स मी अलॉट रुचिका
0: जी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है जब हम किसी के साथ कोई केस डिस्कस कर रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कुछ लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं नजर आ रही हैं, कोई रिजल्ट्स जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो गुस्सा आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है?
1: गुस्सा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी तो कारण ही होगा ना?
0: होंगे जी,
1: है ना
0: जी।
1: और हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है
0: जी।
1: सो अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर रुका हुआ है और वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका अपना एक पर्पज है
0: जी।
1: और वो पर्पज जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति वहां से आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उसको वहां उस परिस्थिति में रह के जो लेसन्स लेने हैं, जो लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा
0: जी।
1: जिसके कारणवश ये

0: बनने के बजाय जो वो बिगड़ जाती है।
1: जी
0: तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये गुस्सा होता क्या है और ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ेंगे।

0: दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे से और स्वीट से मेहमान। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत, प्यारे से कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुस्से की वजह आखिर क्या हो सकती है, या गुस्सा जब भी हमें आता है तो कोई ना कोई रीजंस जो है वो जरूर रहते हैं। तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुस्सा होता क्या है और कैसे हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मेन हम यही बोल सकते हैं कि इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं।
1: सुरुचिका, गुस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है
0: जी।
1: हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, हमें गिल्ट होता है, हमें एक प्रकार से कभी हमें करुणा में महसूस होता है, तो कभी हमें

0: ईर्ष्या होती है, तो ये सारे ही इमोशंस जो है ये बहुत ही क्लियर है अपने आप में। लेकिन गुस्सा एक ऐसा इमोशन है अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन सबसे ये सब होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है जिसके कारणवश बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं पर अपने रिश्तों में भी और रिश्तों से बाकी के जीवन में भी परेशानियां लाता है
1: जी।
0: गुस्से को ऐसा मानिए कि ये एक प्रकार का मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जो सामने वाले को कुछ सर्टेन चीजें महसूस कराना चाहता है, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज ऊंची हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रकार की पावर महसूस होती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पावरफुल हूँ। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एंगर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन आवर सराउंडिंग, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस एनवायरमेंट को, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अब ये है मुखौटा, ये है बाहर। हमारे भीतर या समझिए कि प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस के आधार पे चलती है। अब इसी प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बैलेंस को ही रीच आउट करती है। अब अगर हमारे बाहर, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में ये गुस्सा इस प्रकार से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग, इट मीन्स हमारे बीनीथ एज एन इस मास्क के बीनीथ या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जहां पे व्यक्ति को लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को पावरलेस महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ गया। अब आप समझ रहे हैं कि
1: एक्सटर्नल,
0: डेफिनेटली एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस। तो गुस्सा सिर्फ एक मास्क है, उसके भीतर ये सारे भावनाएं, ये कहां से आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस कहां से आएगी, या एक प्रकार से पावरलेसनेस, या कुछ कंट्रोल नहीं है अब सब कुछ खत्म हो गया, ये भावनाएं कहां से आएंगी, ये आएंगी डिसअपॉइंटमेंट से, ये आएंगी हर्ट से, ये आएंगी फियर से। तो जब जब इंसान फियरफुल स्टेट में हो वो अपने फियर से फाइट करने के लिए गुस्से में आ सकते। आपने देखा होगा जब जानवर डर जाता है, उनको लगता है कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक कर देते हो।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि गुस्सा।
1: एग्जाम्पल के लिए हम सांप को ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे अटैक करने वाले, इसलिए वो
0: अटैक
1: फाइट करते हैं।
0: डेफिनेटली, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर, वो वायलेंट बिहेवियर, वो हार्मफुल बिहेवियर के पीछे का क्या कारण है, फियर। सिमिलरली आप देखेंगे हर्ट, लेट्स से एक कपल है चीट कर दिया, बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने सामान तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, रिश्ता तो तोड़ा ही
1: जी।
0: तो दैट फॉर्म ऑफ एंगर इज अगेन इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम हर्ट। अब इसी प्रकार से अब लेट्स से पेरेंट एंड चाइल्ड है, बच्चे के मार्क्स कम आए, पेरेंट गॉट डिसअपॉइंटेड, पेरेंट्स क्या करेंगे, गुस्सा तो एज मास्क एक जैसा ही है, पर गुस्से उस मास्क के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग
1: कुछ भी हो सकता है।
0: तो जब आपने पूछा ना कि गुस्सा क्या है, तो गुस्सा तो एक बहरूपिया है
1: जी।
0: आपको उस बहरूपिये के पीछे छुपे हुए भावनाओं को समझना है और उनको एक्सप्रेस करना है। जब ये कर पाता है व्यक्ति, तब वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाता है, उसे पता होता है कि उसको एग्जैक्टली किस क्षण पर क्या चाहिए, उसे क्या बुरा लगा है, उसे क्या ठेस पहुंची है, वो अपनी बात को किस प्रकार से सामने खूबसूरती से, सरलता से रख सकता है। कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इट। पहली चीज तो ये कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे हमें लगता है जैसे हमें हर चीज को कंट्रोल करना है
1: जी,
0: जबकि प्रकृति में कुछ भी कंट्रोल होने के लिए बना ही नहीं। प्रकृति में हर चीज फ्लोइंग स्टेट में है। आप नदी को देख लीजिए, ओपन है,
1: बिल्कुल।
0: समंदर को देख लीजिए, ओपन है। आकाश को देख लीजिए, बादलों को देख लीजिए, ओपन है। हवा को देख लीजिए, आप पकड़ के दिखा लीजिए। तो स्वच्छंद स्वतंत्रता प्रकृति का अपना आचरण है और हम प्रकृति से भिन्न नहीं, हमारी भावनाएं प्रकृति से भिन्न नहीं, ये सब एक है। इसलिए हमें ये समझना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नजरिए में इस बदलाव को लाना है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करके उनको फ्लोइंग स्टेट में रखना है। हाँ, उनका ख्याल रखना जरूरी है वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि जब भी कोई बच्चा ही गुस्सा कर दे तो पेरेंट्स हो या फिर हम जो भी देख रहे होते हैं वो तो यही बोलते हैं, भाई गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अक्सर यही बात
0: आपको पता है रुचिका, हमें कंट्रोल करने का भाव कहाँ से आता है? जब हमें लगता है कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि ये तो इतना अनसर्टेन है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब हमें वो चीज समझ में नहीं आती, तब हम सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं और हम डर जाएंगे। एनीथिंग दैट इज अनसर्टेन विल लीड अस टू फील फियरफुल एंड फियर विल आस्क अस टू कंट्रोल एंड दैट विल लीड अस टू एंगर। तो ऐसा मानिए कि बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अगर पेरेंट को गुस्सा ही करना पड़ रहा है
1: जी,
0: तो ये बहुत दुख की बात है और इस बात में कोई सेंस नहीं,
1: बिल्कुल सेंसलेस। जी तो दोस्तों, बहुत ही ये गंभीर सी बात, और ये शब्द अक्सर हम सभी बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा आ रहा है तो उसे पहले दांतों से दबाया जाए, फिर खुद को वो किया जाए, मतलब कि कुछ भी लोग क्या करते हैं, बच्चे खास करके कोई दीवार से सर मार रहे हैं या पंच कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरह से अगर हम किसी और भी नहीं उतार सकते तो ऐसी चीजों से हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हम अक्सर कहते हैं तो वही चीज हम करते हैं। तो अभी अभी आप सभी ने जाना दोस्तों कि गुस्से को कंट्रोल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो मे बी इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि ये बहुत खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद के माध्यम से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास ये बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर से आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे। और गुस्से की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि असल में गुस्सा क्या होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमने जाना कि गुस्सा क्या होता है और ये भी जाना कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए, जितना हम लोग गुस्से को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ही ज्यादा गुस्सा हमारे लिए सरल होता जाता है और वो हमारे लिए उस पाथ ऑफ एक्सप्रेशन को भी और सरल बना देता है। देखिए, आप ऐसे मानिए कि गुस्सा एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान से समझा ही नहीं
0: जी,
1: किसी ने उसको गौर से सुना ही नहीं, उसकी नीड्स क्या हैं उनको फुलफिल किया ही नहीं। तो अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसकी नीड्स निग्लेक्टेड है, जो अनसीन है, अनहर्ड है, सप्रेस्ड है, तो उसे कैसा महसूस होगा, है ना? खराब महसूस होगा। और वो अपनी तरफ से फिर पूरा प्रयास करेगा ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं, आप मुझे इतना निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने ही ना रखे, आप मुझे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद ना करें या पसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। और उस चीज को आप तक कन्वे करने के लिए आपका ही गुस्सा आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगेगा कि आपका जो एक सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता चला जाएगा। सो देन योर एंगर विल चूज टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। इसीलिए आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले केसेस आ रहे हैं, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर फिजिकल अब्यूज इस कदर किया जाता है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ही गुस्से को इतना दबाया है। अब वो बोल रहा है आपसे, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और तुम मुझसे दूर भागोगे तो मैं तुम्हारे व्यवहार के थ्रू तुम्हारे रिश्तों में ऐसा पॉइजन स्प्रेड करूंगा कि तुमको तब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और अगर तुम तब भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। So it becomes so observable and so measurable that how anger is impacting someone's life. तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की।
0: जी
1: देखिए, एक्सप्रेस करने के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करेगी, अगर आप नदी पर बांध लगा देंगे तो क्या होगा एक समय के बाद?
0: वो तो फिर
1: वो बांध तोड़ के निकल
0: जाएंगी।
1: यस, और जब वो बांध तोड़ के निकलेगी तब हर जगह डिस्ट्रक्शन। इसी चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे नदी का प्रवाह कैसा है, हमारे नदी का स्वभाव कैसा है, उसकी नीड्स क्या है। अब किसी का प्रवाह ज्यादा तीव्र हो तो उसकी नीड्स अलग प्रकार की होंगी, तब हमें प्रोबेबली मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे जहां पे उसकी तीव्रता को थोड़ा कम किया जा सके और उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए ईजिली स्मूथली रिलीज किया जा सके विदाउट कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज द वे कि वी हैव टू टेक मेजर्स विच आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर फॉर द इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपका नदी ऐसी है जो जिसकी तीव्रता नहीं है, कम है, जो शांत स्वभाव की, तो ऐसी नदी के लिए हमें बहुत ज्यादा
0: मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि वो प्रवाह का रुख रुकना नहीं चाहिए। जैसी प्रवाह का रुख रुकेगा वैसे ही अंदर जो लाइफ है पानी के वो मरनी शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। और फिर वो एक वॉल्केनो की तरह बाढ़ लेकर जब वो फटेगी, आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने स्वभाव को समझना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीजों की आवश्यकता और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, इस प्रकार की ये जो सेकंड एग्जांपल हमने दिया, अगर ये चीज वो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने लग जाए जिसका नदी का प्रवाह यानी कि गुस्सा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए ये चीज वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जो कि सेकंड टाइप ऑफ पीपल के लिए दे सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज, जितना अंडरस्टैंड करेंगे एंगर को उतना बेटर होता है। अब एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव हम सभी जानते हैं तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन की एंगर के लिए. देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या है, उस मास्क के बिनीत क्या इमोशन है. इज इट फियर, इज इट हर्ट, इज इट डिसअपॉइंटमेंट. आप समझ पाएंगे फिर कि आपको अपने फियर को एक्सप्रेस करना है कि हर्ट को एक्सप्रेस करना है कि डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग में चेंज आ जाएगा, हमारी हार्ट बीट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी. ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो रहा है और अगर उनके आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे और उनका सिरदर्द और बढ़ा रहे हैं, तब देखिए उनको जो गुस्सा आता है सारा बीपी लो एक साइड और सडनली उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम चुप हो जाओ. राइट तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे भीतर हो रहे हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उस दौरान में हम क्या इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक अगर एक यज्ञ चल रहा है और आप उसमें क्या आहुति डाल रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो आप ऐसे सोचिए कि आपका जो गुस्सा है वो भी एक हवन कुंड के प्रकार ही है.
0: कम हो गए
1: आप हवन कुंड ऐसा मानिए.
0: तो वही आ गया ना, आग में घी डाल.
1: हाँ, अब आप आग में पानी डाल रहे हैं या आग में घी डाल रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो क्या चीजें हैं जो घी का काम करेंगी आपके लिए, आप उनकी एक लिस्ट बना ले और अपने आसपास जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दे कि देखिए जब हम गुस्से में हो तो ये घी का काम करेंगे, इनको मुझसे दूर रखें, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल फॉर मी. और उन चीजों की भी लिस्ट बना ले जो पानी का काम करेंगे और वो भी शेयर कर दे, और अपने पास उन चीजों को रखें भी जो पानी का काम करने वाली है. यानी कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके गुस्से के लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है. ये दोनों में डिफरेंस पता होना रुचिका बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जीवन को बहुत सरल बना देता है. अब जो चीजें पानी वाली हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. मे बी गो आउट एंड रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि गुस्सा जो है दैट इज एनर्जी. गुस्से में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो आप अपना एक स्पेस ले लें, एक थोड़ा टाइम ले लें और आप उस एनर्जी को रिलीज कर दें. आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, वो आपके गुस्से को रिलीज करने में मदद करेंगी. उसके बाद आप अनुलोम विलोम से करते हुए भ्रामरी आ सकते हैं और भ्रामरी के बाद आप थोड़े समय के लिए बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस फ्लो में अगर आप ये चीजें करते हैं, गिवन दैट कि किसी प्रकार की लोगों को एलर्जी ना हो जिसमें ये प्रकार के प्राणायाम उन्हें इम्पैक्ट करते हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखें हमारी ऑडियंस. तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से फॉलो करी जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है. गुस्से में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रुचिका, क्योंकि ब्रीदिंग अपने आप चेंज हो जाती है और ब्रीदिंग से हमारी सारी चीजें इंटरनली कनेक्टेड होती है. तो अगर हम प्राणायाम इसमें इन्वॉल्व करते हैं या एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर दें या जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इन्वॉल्व कर दें, तो इस प्रकार की चीजें हमारे गुस्से को रिलीज होने में बहुत सहायता दे सकती है. देयर इज वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस पर्सनली. आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, अ मेंटल चैलेंज, कि या तो इस गुस्से को अभी गिव अप कर दो, इस गुस्से को कनेक्ट विद द प्राइमरी इमोशन राइट अवे, और अगर नहीं कर रहे हो तो तब तक के लिए पुशअप्स करते रहो. सो देर इज अ फिजिकल चैलेंज, लाइक फिजिकल एक हमारे पास टास्क है, एंड देन देर इज अ मेंटल टास्क. नाउ आई हैव टू पिक और से माई ईगो हमारे अहम को चूज करना है, वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट टू गिव अप फर्स्ट, द साइकोलॉजिकल चैलेंज और द फिजिकल चैलेंज. फिजिकल चैलेंज तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तो इसको तो गिव अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो यानी कि आई विल कीप ऑन डूइंग पुशअप्स तब तक जब तक हमारा गुस्सा साइकोलॉजिकल लेवल से गिव अप ना हम करते, सरेंडर जब तक हम ना करते. एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स सो वेल फॉर मी. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए काम करे, इसीलिए हमने बोला कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करके अपने लिए, खुद के लिए एक डीएस्केलेशन प्लान क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी को हमें लगता है करना चाहिए, और इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गुस्से को एक सही दिशा दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा है मैम ने। तो जिस तरह से एक्सरसाइजेस मैम ने बताई, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हाँ सभी लोग जो है उसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ को अपने अपने इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं।
1: तो डेफिनेटली देखिए, एक्सरसाइज नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: प्राणायाम नहीं है तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को लिख कर अपनी डायरी और पेन लीजिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पीस ऑफ पेपर जहां पर आपने वो लिखा है। टॉक टू समबडी, शेयर अबाउट इट, रिलीज दैट एंगर, एंड देन थिंक ऑफ इट, व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे टू मी।
0: जी, और सबसे खास बात की ये सब करने के लिए हमें अपने आप को जानना
1: बहुत जरूरी है,
0: बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम जानते ही नहीं है। हम अपने आस पड़ोस के लोगों का या अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारी अपनी क्या जो खुशियां हैं, या अपने क्या शौक हैं, क्या टैलेंट हमारे अंदर है, या तो कई बार हम दूसरों के चलते उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, या तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो इन चीजों के लिए, या कोई भी हमारी हेल्थ इश्यू है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो जब तक हम अपने आप के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या अपने गुस्से को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें खुद को पता होता है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है। वो पहले से ही अपने जो जान पहचान के होते हैं तो उन्हें बोलकर रखा होता है कि जब मेरे को गुस्सा आ जाए तो या तो ऐसी कोई हरकत, जैसे आपने कहा ना कि वो घी डालने वाली बात ना करे, तो वो पहले से उन्होंने कन्वे किया होता है कि भाई उस समय मेरे से कोई भी जो है बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, या क्या क्या मैं रिएक्शन जो है वो कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो इसी तरह से हमें जो है मैनेज करना जो है अपने गुस्से को, तो उसके लिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आप सभी सुन रहे हैं गुंजन रेडियो 91.2 FM, रुचिका और प्रियशी के साथ मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर।
1: जी दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रयास है ये भी आपके मन की ओर तक पहुंच रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इस बहुत ही खास बातचीत को जो है आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हैं। तो मैम, हमने बहुत सारी बातें की गुस्से के बारे में, तो गुस्से को कैसे मैनेज करना, जब गुस्सा आ ही गया उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमें गुस्सा आए ही ना, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़े। क्या ऐसा भी कोई टिप्स है या ऐसा कोई रूल है जिससे हम उससे बच सकते हैं?
0: देखिए रुचिका, गुस्सा वैसे अपने आप में एक बहुत ही साधारण सा भाव है। हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास हर प्रकार के भाव होते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भावनाओं में कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या इससे हमारी सेहत को हार्म होता है, तो येस, डेफिनेटली हार्म होता है। इसलिए हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वो हमें करना चाहिए हर संभव प्रयास के नज़रिए से। अब जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुस्सा ना आए
1: जी,
0: तो हम ये बोलेंगे कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कितना बहना है ये हमारे हाथों में है, और उस गुस्से से हम कितना इम्पैक्ट हो ये भी हमारे हाथों में है। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर या रियलिटी के आधार पर ऐसा समझिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर कुछ है, सब चीजें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे हम डिसएग्री करते होंगे या जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। बट जीवन में इस प्रकार से तो हम जी नहीं सकते जहां पर ये चीजें हो ही ना कम्प्लीटली, क्योंकि जीवन तो ऑल और नन में काम नहीं करता, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल शेड्स। तो हमें हमारे अंदर उन सभी शेड्स के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपने वातावरण में ऐसे लोग हों जो हमारी बातों को समझें, और अगर समझ ना पाए तो कम से कम उनका आदर रखें, उनकी इज्जत रखें। सिंपली देखा जाए तो अधिकांश लोगों को गुस्सा तब दो तीन एस्पेक्ट्स में आता है। अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है और उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा तब आता है जब कुछ वो इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर एक प्रकार की एक्सेप्टेंस और ओपननेस होनी भी जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि वो अपने आप को उस इनजस्टिस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, वॉट दे कैन डू इज दे कैन क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम। वो अपने वातावरण में एक स्क्रीनिंग करें और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के इनजस्टिस को इधर टॉलरेट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर खुद वो इनजस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार की हेल्दी बाउंड्री जब रहेगी तब इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जब इंसान खुद में हेल्दी रहेगा तभी वो इस प्रकार के इनजस्टिस के अगेंस्ट कुछ काम कर पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ मदद कर पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए एक प्रकार से वो दूरी बना के रखना ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ यही चीजें हैं, और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अपने आप को रिमाइंडर्स देना, एंकर्स सेट करना, एंकर्स ऐसे कि हमें कौन से इमोशन को ज्यादा ध्यान देना है हम उसको चुन सकें, हम ये चुन सकें कि हम अपने जीवन में प्रेम से ऑपरेट करें, लव से ऑपरेट करें, रादर देन फियर से या फिर इनसिक्योरिटी से या डिसअपॉइंटमेंट से। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो आपको हर जगह मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी लोगों को डिसअपॉइंट करते होंगे। इसलिए अपने अंदर वो ओपननेस, वो एक्सेप्टेंस और रियलिज्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो वो चीजें हमें जाननी होंगी कि जिस जिस वजह से हमें गुस्सा आता है तो उससे फिर हमें खुद ही थोड़ा सा जो है बैक स्टेप लेने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, आप उन चैनल से एंगेज ही मत करिए जहां पर आपको पता है पांव रखते ही आपको
1: फिसलना
0: होगा। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हम वैसे भी जब हमें लगता है कि आग से हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा तो हम जानबूझकर उसके आगे नहीं जाते हैं, तो गुस्सा भी उसी तरह से समझ लीजिए कि उससे भी कोई ना कोई हार्म जो है हमारी जो है मानसिक हेल्थ को होगा या हमको होगा किसी, क्योंकि मानसिक हेल्थ भी हमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है पूरी तरह से होता है,
0: वो फिजिकल हेल्थ में जरूर कन्वर्ट होगा।
1: जी,
0: जितने भी लोग हैं जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं उनके भीतर आप देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद उनके भीतर बीमारियां आएंगी ही आएंगी।
1: जी, तो अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये सारी जो भी हम आप सभी तक बातें पहुंचाते हैं या जानकारियां पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पे जरूर काम करेंगे या करते होंगे। तो आज का ये बहुत ही खास जो सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, और दोस्तों इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जी दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक और खास बात आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर से बता देते हैं कि अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको भी ऐसी कुछ बातों से फेस होना पड़ रहा है और शायद हमारी इस बातचीत में भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं, आप वहां सेंटर जाके भी अगर आपको काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए तो आप आराम से वहां बैठ कर जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057।
1: और कहाँ पर आना होगा हमारे दोस्तों को?
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला, कांगड़ा।
1: जी दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट कर लिया है और ये बहुत ही खास बातों के साथ साथ आप सेशंस भी मैम से ले सकते हैं, तो आप सेंटर भी जा सकते हैं या फोन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन्ही बातों के साथ आज का ये सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद।

0: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमेरिका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

0: क्या है?
1: क्या है ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करें प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अरे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
4: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

की धूम। उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य

गणपति के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए। उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर

0: तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सारे पैसे?
5: Oh, no.
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh, no.
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहना जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम इंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: दादी
1: क्या है?
0: क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते जब तक डस्टबिन ना मिले।
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अबे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
4: मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh, no.
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh, no.
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्स पर ए है दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है कने तुहां सारे भी इसी स्वागत कन्ने जुड़ी होने न कार्यक्रम दे सफर करने ये सफ़र तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक तो जल्दी जल्दी इस सफ़र कन्ने जुड़ा कन्ने जेड़ा गलबात है से जरूर इस कार्यक्रम च करा गलबात करने वास्ते जेड़ा हां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचेगा ताई तां तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे नंबर है 701-811-7091 नंबर तुह तक पहुँचाई ते बाकी जेड़ा काम है से तुहंदे इसी कन्ने अहां भी अपना जेड़ा काम है से शुरू कर देन जेड़ा गीत हैं सभी तुह तक पहुँचाने न तो इसी गीते कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से कर देन फिर बाकी दियां जेड़ा गल्लां न से तुहां तक लेकरी आउंदे न

0: 91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत। तो जरूर अहां इस गीत कने अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से कीती है कने जेड़ा पहले श्रोता अहां कने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है
1: ना? ठीक जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नां की है जी?
1: बैजनाथ से बोला दे
0: जी। बैजनाथ ते बोला दे?
1: हांजी
0: जी। ता बैजनाथ दा मौसम कदे है जी?
1: बढ़िया, बरखा लगी है थोड़ी
0: जी। बरखा लगी हो?
1: हांजी।

0: ज्यादा लगी हो कि थोड़ी लगी हो?
1: नहीं थोड़ी थोड़ी
0: जी, एथू भी मौसम दे दई है, बरखा लग गई, कदी धूप लगी पौधी ना जी।
1: अच्छा
0: जी जी
1: अच्छा
0: जी ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी जी।
1: सही गद्दी चल रहा प्रदेश।
0: जी गीत तो हाँ सही सुनना है
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, बड़ा फेवरेट गीत है तुहंदा ये
1: जी जी
0: जी। ता हाँ कहो तुहन जो ये गीत पसंद होंदा, क्या जेड़ा रीजन है?
1: रीजन ये बढ़िया
0: जी अच्छा बदी है बस।
1: है। अरे
0: जी, कई बार होंगे ना कि अहाँ कोई भी गीत सुनते ना, कने तिना गीता जो ध्याने ने सुनते ना कुथी से अहाँ जो अच्छे लगते ना जी।
1: अंजी
0: जी जी
1: अंजी
0: जी जरूर, तुम्हारी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते
1: ठीक
0: बड़ा
1: है जी धन्यवाद।
0: बड़ा बढ़िया जी। तुहदा भी दर्शुताओं, तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह करने जुड़ी सकते, कन्या हाँ करने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते नंबर तुह तक कहाँ पहले ही पहुँचाई थे है, कन्या एक बारी फिर ते पहुँचाई दे ना, नंबर है 7 0 1 8 1 1 7 0 9 1। फिर ते तुह तक नंबर पहुँचाई थे है, कन्या अगले जेड़ा श्रोता है ना से जुड़ चुके हैं ना, कर दिन तीना करने गल बात। हेलो,
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला से। ठीक ठाक है ना
1: जी
0: जी? तुह कुथु ते बोला दे, कने तुहंदा ना के जी?
1: प्रकाश बोला सुके वाके
0: जी प्रकाश जी बोला दे सुक्के वागे ते।
1: जी।
0: जी ता प्रकाश जी, आज का जेड़ा दिन है से तुहंदा कदिया की चलिया?
1: रंगे करा जी
0: जी
1: रोटी खाई क्या है ना काम
0: जी जी काम कुथु लगाया तुहा?
1: में सीधा चाहिए बदलते
0: जी अच्छा, सुके बागे ते अखे वखे ही लगाया कुथी
1: जी।
0: जी? और नोहिता जी?
1: नहीं कुछ नहीं सब्जी लगी है बड़ी बड़ी सटी है। हाँ जी
0: जी अच्छा, सब्जियां बड़ियां फरी लगियां थियां
1: हाँ जी हाँ जी बड़े सब्जी लगी है यहाँ
0: जी? ता क्या
1: जितने
0: क्या
1: काम काम लाए ना नहीं
0: जी?
1: हाँ जी तो सारे हमने कहा बड़े इच्छी इच्छी है इच्छी हारी पैना जी सब यही सब्जी
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी ता क्या क्या सब्जी जेड़े ऐसे तुहां लगाई थी कने?
1: इन्हें कि चला ये डानी ये देन मतलब
0: जी
1: कहना उड़ता पाना नहीं बड़ी बढ़िया तो नहीं रही है।
0: जी जी
1: हाँ जी बड़े बतूर के लगते हैं कहना भी वो लिया दी नहीं पानी आ रही भी
0: खाने वाले भी नहीं ले आते?
1: हाँ जी बड़ी है वो जैसे बंटा दे। हाँ
0: जी चलो अच्छी गल है जी।
1: जी
0: जी मेहनत दा फल है ना जी?
1: हाँ जी
0: जी ता मेहनत तो है, क्या लगता मेहनत करी करी अहाँ क्या क्या हासिल चिड़े से करी सकते?
1: मैं था करना जी नहीं कि पता क्या करेगी क्या नींद की।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: तो मैं बड़ी खुशी हुई कोई चीज करेगी कहीं या कहना
0: जी
1: बंटी पार्टी खाई है सारे।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी तिहा खाने दा अलग ही जिड़ा स्वाद है हाँ बोली सकदे से आउंदा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी बस
0: जी जी ता प्रकाश जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने है जी?
1: बाबे सुनाई नहीं पाई
0: जी बाबे दा कुंदिया
1: दसो
0: भजन।
1: पापा जी मुख केड़ी गल मेरी बात
0: जी दसो बाबा जी गल केड़ी?
1: मुख केड़ी गल मेरी
0: जी जी जरूर जी, ये भजन तो तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: धन्यवाद।
0: जी। दर्शो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ा दे ना, करें तो जो ले करी चल दे ना अगली फरमाइश की ओर।

0: तो सारे सुनिया एक गीत, ए फरमाइश, ए फरमाइश यहाँ तक पहुंची हुए बैजनाथ ते, कने तीना दा नाम है बिहारी जी, तो जरूर तीना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुंचाई, कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। फिर यहाँ वापिस आई आते न अपनी गलबात ऊपर, समय दी और अगर नज़र दौड़ाते न तो समय जड़ा है से 2:16 कार्यक्रम च हुई न, तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया, कने अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके न कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते सरती
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी। धन्यवाद जी, ठीक ठाक। कौन बोला?
0: जी? यहाँ भी ठीक ठाक है जी। जी ता आज तुहां क्या काम कार छेड़े जी, क्या करा दे
1: वही कम काल में पहले बरखा लगी हो।
0: जी? अच्छा, दाढ़ी दा मौसम बरखा आ रहा है, बरखा लगी हो
1: थोड़ी
0: जी? ज्यादा लगी हो कि थोड़ी लगी हो? हेलो हेलो,

0: हेलो
1: लगी फोन वहाँ
0: जी, तो हिंदी आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दी जी।
1: ऊपर से ही आ रहे
0: जी
1: लगी फोन ही
0: जी जी
1: नहीं
0: जी और नहीं था जी। शुतों कॉल टिड़े से डिस्कनेक्टेड हुई हो था जरूर। हाँ, मौसम दियो और अगर नज़र दौड़ाइए था मौसम जिड़े से दाढ़ी दी गाल करिए या बैजनाथ दी गाल करिए था श्रोता जिड़ा ने सहा करने जुड़े थे तो तिना जरूर मौसम दी जिड़ा जानकारी ऐसे तो तक पहुँचाई थी कि मौसम थोड़ा बरखाड़ा भी है धूप भी है मतलब मौसम च बदलाव जिड़े से चल रहा है तो मौसम के अनुसार तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखना है कने अगले जेड़ा श्रोता न अहाँ भी तिना दा ख्याल जेड़े से जरूर रख देना। हेलो,
1: नमस्ते शशि
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला छे। ठीक ठाक है न
1: जी ठीक ठाक जी।
0: जी? तुह कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना
1: सुमंता
0: क्या है जी?
1: से बोल रहा जी सुभाष।
0: जी सुभाष जी, क्या काम का तोहा लगाया क्या करा दे?
1: काम कार लगाया जरा सब्जी लगाई है मटर मोटर लगाए
0: जी अच्छा, सब्जी जेड़े से तोहा लगाई थी है
1: हाँ लगाई थी पोर्टफोलियो से चल लगाई
0: जी? अच्छा, पोलियो से जेड़े से सब्जी लगाई तोहा
1: जी हाँ
0: जी? क्या क्या जेड़े से तोहा सब्जी लगाई थी सियाले दी
1: सब्जी लगाई थी मटर मूलियां
0: जी?
1: पालक
0: जी
1: लगाए हैं
0: जी अच्छा, मटर पालक मूलियां जेड़ा ने से तोहा लगाई थी ना
1: जी।
0: जी? ता मेहनत कितनी की लग दी
1: मेहनत तो जबरदस्त लग रही है खर खा रहे
0: जी?
1: कुछ न कुछ काम मुझे
0: जी
1: करना तो कुछ शक्ति होता ही है जी।
0: जी ताई यहाँ पूछा दे ना कि मेहनत कितनी के लगती?
1: मेहनत तो क्या लगी है 2 4 दिन
0: जी अच्छा, 2 3 दिन 4 दिन मनी के लिए चला, 4 दिन जड़ा लगी है तो हाँ यो
1: लगी है जी
0: जी? ता तो हाँ किले ही लगाई कि कोई और भी था सोगे?
1: किला किला लगे
0: जी अच्छा जी अच्छा, किले ही जेड़े ऐसे तो हाँ सारी सब्जी जेड़े ऐसे लगाई जी? ता सुभाष जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़े ऐसे सुनना पसंद करिए। हेलो, हेलो शुतों कॉल जेड़े ऐसे डिस्कनेक्टेड होई हो क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी च उतार चढ़ाव जेड़ा ने से चले रहने ना कने मुझे लगा था मौसम भी थोड़ा दिया खराब है कने मौसम दिया वजह ने जेड़ा नेटवर्क इशू जेड़े से यहाँ जो दिखने जो मिला है तो वहाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कने अगले जेड़ा श्रोता ने सभी जुड़ी हो ना कर दिन तिना कने गल बात। हेलो, तो कॉल जेड़े से जरूर श्रोता करा देना, हम भी कोशिश जेड़ा करा देन कि तेरा दी कॉल जेड़े से जरूर अटेंड करन। हेलो,
1: नमस्ते शशि मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है
1: वो ठीक
0: जी।
1: ठाक है ना
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो ठीक
1: पहचाने
0: जी? तो हाँ, अपने रेडियो सेट दी आवाज़ कम करी लेंगे जी पहले?
1: करके मैडम जी कर करी
0: जी,
1: वो ठीक ठाक है ना पहचाने
0: हाँ जी ठीक ठाक है जी। तो हाँ ठीक है
1: तो आम देने पहचाने मैडम जी मत देना कितने में कौन तो आए हो
0: जी। राकेश
1: मैं
0: जी
1: अपने भाण जी आए मैं बोला मेरे मैडम ने कर गल ना तू भी करा सी ना रेडियो सेव किता कना बोले मैं करा कर की गल
0: जी
1: पहाड़ी जी
0: जी
1: को सोना करा मा
0: जी जी
1: और मैडम जी देख
0: जी तो हाँ
1: बरखा बड़ा सौंक तंग से तेड़े मैडम जी
0: जी अच्छा, बरखा लगी हो जी?
1: हां बरखा खूब दे जड़े हुत्ता मत हुन भी लगा सी पहले भी लगा सी
0: जी, बरखा ना होए तभी यहाँ जो टेंशन होंदी
1: नहीं मैडम
0: जी
1: जी बरखा ना होता भी लोग जीना देंदे होता भी नहीं जीना देंदे
0: जी
1: हाँ जी
0: जी ता ਰਕੇਸ਼ੀ ਔਰ ਨੋਇਤਾ ਜੀ
1: ਦੇਖਿਆ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ
0: ਜੀ
1: ਖੀਰੇ ਲਏ ਖਾਣਾ ਖੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਣੇ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਖੀਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋ
1: ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਣੀ ਹੋ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਪਣੀ ਪਾਣ ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਨੀ ਲੂਣ ਵਿਆਈ ਹੈ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਇਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਖੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਘੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਰੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋ
0: ਜੀ
1: ठीक
0: हेलो नमस्ते जी
2: नमस्ते जी कैसे हो
0: जी ठीक ठाक हैं जी बहुत ठीक ठाक हैं
2: हाँ जी ठीक
0: जी क्या
2: कितने देर में फोन करेगी
0: जी हेलो
2: हाँ जी
0: जी ठीक ठाक हैं जी तो हाँ
2: हाँ जी ठीक है तो हाँ ठीक है ना
0: हाँ जी ठीक ठाक हैं जी क्या काम कार छेड़े जी तो हाँ क्या करा दे
2: बस कुछ नहीं बैठी हो ना आई हो ना मतलब मामा बोले गाल कर ले ना ने मैं दो तीन बारी ट्राई किता कॉल
0: जी जी
2: ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਲੈਂਦੀ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
2: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕਰਾ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ
1: ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
0: ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਸ਼ੋ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੀਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਨਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो तुम नेटवर्क जेड़ा इशू है से थोड़ा देर चले है तो फिर ते हाँ वापिस आई हूँ तो हाँ तक गलबात करना कन्ने जेड़ा श्रोता कॉल करा देना तिना दी कॉल जो भी जरूर तो हाँ तक पहुँचा देना गलबात। हेलो
1: मैं
0: श्रोतों कॉल जड़े से डिसकनेक्टेड हुई हो तो जरूर तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ी सकते कन्या हाँ करने गलबात जरूर करी सकते पर जल तो हाँ कॉल करा देना तो ये भी जरूर दिखा कि कॉल जड़े से तो हाँ कुतू करा देना अपनी गलबात जरा तो जो लगता है कि रेडियो च साझा करने वाली है तो जरूर करा कन्या अपनी पसंद दे जड़ा गीत हैं सभी तो हाँ इस कार्यक्रम दे सफर च सुनी सकते कने गलबात हाँ अगर मौसम दी करिए धर्मशाला दा जेड़ा मौसम है 9 सितंबर दी गल करिए क्योंकि जिंदगी है जिंदगी च जेड़ा उतार चढ़ावन से हमेशा चले रहते पर अगर उतार चढ़ाव भी जिंदगी च ना होन तो जिंदगी दा क्या अह जो जेड़ा मतलब है से समझ आना तो मौसम दी जेड़ा गल है से अगर अहाँ करिए तो धर्मशाला का जेड़ा मौसम है से बड़ा ही सुहावना है। मौसम तो हर जगह का सुहावना होंदा कने कुथी ना कुथी अपनी ओर जेड़ा आकर्षित है से अहाँ जो जरूर करता है मौसम तो मौसम के अनुसार चलना भी अहाँ वास्ते जरूरी है क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि थोड़ा दिया हाँ घूमी लैन देना थोड़ा दिया हाँ अपनी जिंदगी जो इंजॉय करी लैन देना क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है ना इस घूमना फिरना भी ज़रूरी है पढ़ाई करना भी ज़रूरी है मेहनत करना भी ज़रूरी है पर कई बार अहाँ अपने काम च इतने ज़्यादा बिजी हो जाते कि अहाँ खुद जो ही जड़े से कुथी ना कुथी नज़रअंदाज करना जड़े से शुरू करेंगे तो खुद जो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जलो अहाँ खुद जो नज़रअंदाज करना शुरू करेंगे ना तो कुथी ना कुथी अहाँ क्या करते न अपनी जड़ा जिंदगी दे लम्हे न छोटी छोटी जड़ा खुशियाँ न तिना जो अहाँ कुथी ना कुथी मिस करेंगे न तो इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी अहाँ कर देना गल बात। हेलो
1: नमस्ते मैडम
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी, ठीक ठाक जी, बढ़िया।
0: जी तो हाँ कुथु दे रहने वाले ने जी कने तो हाँ दा ना के है जी
1: रणजीत मैडम
0: जी ता शाहपुर दे क्या हाल चाल है जी
1: साहब रहे गए तो बड़े दिन हो गए मैडम जी।
0: जी अच्छा शाहपुर गए बड़े दिन हो जी
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी
1: घाटू वाले इलाके रहते थले चातड़ू।
0: जी अच्छा चैतड़ू रहते तो हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी, इस
0: जी ता इस टाइम क्या कामकार छेड़े तो हाँ क्या करा दे
1: काम कार में नहीं होटले जाते। हाँ
0: जी अच्छा ओटले
1: जी,
0: जी ता आज तो हाँ कुंडिया गीत जड़े से सुनना पसंद कर गई जी
1: गाना सुनाई दे मैडम जी। राम लोड़ा लोड़ा केलगार बात साला।
0: जी अच्छा जरूर है गीत ते फरमाइश तो तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो दा
1: वेलकम जी।
0: जी तो शो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा दे न कने तो हाँ सारे जो ही पता है कि जलू गलबात थोड़ी देर ज़्यादा हो जाती है तो श्रोता भी इंतज़ार जड़े से ज़रूर करते न कि कालू दिया तिना दी फरमाइश अहाँ तिना तक पहुँचा देना तो ज़रूर ये फरमाइश अहाँ पहुँचा देना सुखे भाग्य ते फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुए कने तिना दा नाव है प्रकाश जी तो ज़रूर प्रकाश जी तक अहाँ ये भजन पहुँचा देना।

0: ये तो हाँ सारिया का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये गीत फरमाइश इस फरमाइश के बाद जेड़ा बाकी श्रोता ने सभी हम जो जरूर कॉल करा देने कने समय की ओर नज़र दौड़ाइए तो 2:36 जेड़ा कार्यक्रम के सफर च जरूर होइया ना तो समय के अनुसार अहाँ चलना है कने जेड़ा तो हम फरमाइशा न सभी जरूर तुह तक पहुँचानियाँ न कने अगले जेड़ा श्रोता न सियाँ कने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना कने गल बात।
1: हाँ जी
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: जी स्वागत है जी तुह दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है
1: बढ़िया जी बढ़िया तू सुनाओ।
0: जी हाँ ठीक ठाक है जी तो हम कुछ ते बोला दे कने तुह दा ना क्या है जी।
1: ऐसे मंडी दे बोल रहे हैं जी।
0: जी अच्छा
1: चौक पे।
0: जी मंडी ते बोला दे।
1: जी
0: तो क्या हाल चाल है जी मंडी वाले दे।
1: बढ़िया बढ़िया हाल है जी बारिश हो नहीं रही है।
0: जी अच्छा बरखा जेड़ा ऐसे लगी हो मंडी च।
1: हाँ जी बरखा नहीं हो रही है।
0: जी जी
1: कमर ना नाराज हो गई।
0: जी अच्छा बरखा जेड़ा ऐसे नहीं होती।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी और नहीं था जी
1: बस पुरानी है जी अभी तो।
0: जी पुरानी है तो इस टाइम दा मौसम कदे है जी।
1: मौसम बोल रहा था जी बारिश नहीं हो रही है।
0: जी अच्छा बरखा जेड़ा ऐसे नहीं होती। जी जी जी ता आज तो कुंडिया गीत जेड़ा ऐसे सुनना पसंद करके जी।

कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़ी सकते करने हां करने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते फिर ते हां अपनी गलबात जो एथे रोक देना कने तो हां जो लेकर चल देना अगली फरमाइश दी ओर सुन देनी सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तो सारे भी एंजॉय करा।

तशुतों राकेश जी तक कहा गीत पहुंचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय किया कने इसी गीत के बाद अहां फिर ते वापिस आई उन्हें अपनी गलबात उपर कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहां कने जुड़ी सकते कने अहां कने गलबात जिहड़ी से जरूर करी सकते। इस कार्यक्रम की जेड़ा गलबात है से तुहां तक रहिंदी है 2 ते 3 बजे तक। फरमाइशी कार्यक्रम है तो सारे का ही अपना, पहाड़ी कार्यक्रम है तो सारे भी जेड़ा पहाड़ी गीत हैं से इस कार्यक्रम च फरमाइश करी सकते। कने जानकारी दी और अगर हाँ आगे बढ़ते न क्योंकि जानकारियां जेड़ा न से अह जो कुथी ना कुथी जेड़ा कोई ना कोई संदेश जेड़ा है से अह जो दे करी जांदियां न। करे तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने अह कने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते जेड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाते न, नंबर है 701-811-7091। ये नंबर तुह तक पहुँचाई तो है तुह इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो फिर ही हाँ थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो भी अगे बढ़ाते न क्योंकि समय जिन्ना कार्यक्रम च अगे बढ़ा तिन्ना यहाँ भी कार्यक्रम दे सफर च धीरे धीरे अगे बढ़ना है क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी का जेड़ा नाम है से अगे बढ़ना ही है। कने जेड़ा जानकारी की अहां गल कीती थी तो जेड़ा ग्रामीण क्षेत्र हैं जेड़ा सिलेंडर की अहां गल करिए कि जेड़ा बुकिंग तुहां करी सकते न से 25 दिन बाद जेड़े से घरेलू गैस की जेड़ा बुकिंग है से तुहां करी सकते। 25 दिन बाद जेड़ा से जरूर तुहां सिलेंडर की जेड़ा बुकिंग है से करी सकते। तशो तो इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो फ्री ते अगे बढ़ाते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न। सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने इसी कहने तुहां सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश दर्शकों खुश रहना हम वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है, पर हाँ खुश ता नहीं रही सकते अगर हाँ अगले व्यक्ति जो जिहड़ा ऐसे दुख पहुँचाते हैं खुद हाँ खुश होते हैं पर अगला जिहड़ा व्यक्ति है सियाहदियां वजह ने दुखी होता है। सपने यहाँ दिखते हैं ठीक है, सपने दिखना भी जरूरन, पर कुसी दी यहाँ अगर नींद उड़ाई करी से सपने दिखते हैं या कुछ जो तकलीफ पहुँचाते हैं तो तिना सपने दिखने का कोई फायदा नहीं है। तरक्की जरूर करा पर कुसी जो गिराई करी जड़े से तरक्की मत करा। सफल जरूर बना पर अपने जड़ा संस्कार हैं तिना जो जरूर अपुल रखा, क्योंकि आंधे जड़ा संस्कार हैं से यहाँ जो हमेशा यही सिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार अपने जड़ा काम मन से करा देना, क्योंकि खुद हाँ हमेशा अच्छे जड़ा विचार हैं से अपने अंदर रख देना, पर फिर भी यहाँ गुथी ना गुथी अपना जड़ा फायदा है से ज़रूर दिख देना, चाहे अगले व्यक्ति जो नुकसान पहुँचे चाहे उस जो दुख हो है, तो हमेशा अगर तो हाँ एक छोटा दिया काम कर सकते ना तो से ये काम करा कि हमेशा अगले व्यक्ति जी जिहड़ा खुशी है सभी जरूर दिखा। दशो तो वहाँ भी तुहंदी जिहड़ा खुशी है से दिखनी है, कने तो हाँ जो मैं पहले भी बोलिया था कि घूमना फिरना हाँ वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है, तो जरूर तो हाँ जो हूँ घूमना ले चल न इस गाने दे थ्रू मंडी दी ओर, क्योंकि ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए मंडी ते तो तीना तक कहाँ आएगी ये फरमाइश पहुँचा देना।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपने रेडियो दोष शशि कने तो हाँ सारे जो ये रहता है कि इस कार्यक्रम कने जुड़ने पर उन तो हाँ जो ये भी लगे होने कि कार्यक्रम दा जिड़ा समय है से थुई खत्म होने वाला है यानी कि समय जिड़ा से उन्हें हाँ जो बोला था कि इस कार्यक्रम ते अनुमति जिड़ा से जरूर ले लिया तो जरूर कार्यक्रम ते अनुमति जिड़ा से यहाँ लैन देन कने तो वहाँ तक एक गीत जिड़ा से पहुँचा देन कने इसी गीत कने तो वहाँ सारी अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने नहीं सुन दे रही अपना रेडियो गुंजन धर्म।

0: दीदी, क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करिए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य

पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए। उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
5: तुम क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
5: दिख तो रहा है सही से।

सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उस रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: दादी क्या है, क्या ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया,
4: मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

भगवती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहा है सही से।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो तो है सब हूँ करते हैं 91.2 MHz पर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। ता श्रोताओं, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुझेगो हा और बड़ा बड़ा स्वागत है, मोटा मोटा स्वागत है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। तो श्रोतों, जिन की तो सब जानते हैं कि कार्यक्रम 5 बजे तक लाइव चलता है। इस कार्यक्रम मंच हिंद है अपने क्षेत्र धर्मशाला रमणु के न सो जुड़ते हैं, श्रोतों भरमौर रमणु जुड़ते हैं और अन्य क्षेत्र मणु के अनुस्वी जुड़ते हैं श्रोतों। और इस कार्यक्रम मंच तो सब भी जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में श्रोतों इनकी गल बुंदे हा, गलबात बुंदे हा और गलबात कुछ एक खबर सोगे बंदे हैं श्रोतों, कुछ एक कहानी सोगे बंदे हैं, है ना। बहुत सारी जानकारी के अनुसो है तुसु तक पहुँचन दे हिन। और इस कार्यक्रम मंच आकमोके फेरे मोटा मोटा स्वागत है, बड़ा बड़ा स्वागत है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। तैयार कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच तो है सब श्रोता सोगे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 7081889 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ तू होगे शेयर करनो साझा करनो हाँ 7081889 पर तो है सब शो तक कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो बिल्कुल सूग किया सो होने सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी इन शोतों जो है तो थोगे शेयर कर लें, लेकिन नैया पहले आगाज कर लें देन कार्यक्रम रहा इस गीता सोगे और आगाज तो बाद फिर श्रोताओं अन्य जानकारी तो सोगी डिस्कस कर लें।

শত এফ এম ব্যান্ড 91.3 লাভা 2 মেগা হার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হেসা বি টিউন গুরু আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপগেন সো চল রিন্দন্দে ভিডিও সেট মা রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ আইয়ে শত কার্যক্রম জো হগো বনন্দন আর आजकल जो मौसम है सो तुसो के शेयर करते हैं सो तो इस समय के सो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास तापमान के सो धर्मशाला रहा बन रहा सो तो और लगभग लगभग के सोतों सो इस समय इन्हें कुछ देना मंच के सो 24 डिग्री सेल्सियस ते 1 डिग्री सेल्सियस तक के सो गच्छू करता है मौसम सो तो है ना हवा माना मेरे यानी कि ह्यूमिडिटी वस्तार अगर सोता 80% हा सोतों जो हवा में जी बिल्कुल हवा में क्या सो ह्यूमिडिटी वस्तार 80% हा संजा और राति वे समय किया सो आसमान में बादल के अनुशतों सोरे करते हैं और इस प्रकार रा तापमान के सोरे करता है। बहरहाल कार्यक्रम इंदी अपनी गप अगेन है सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो सेट में तो सब श्रोता जुड़ी सकते हैं। इंदे अक्ष श्रोता रा मैसेज किया सो असु तक रख पुजो है श्रोतों और अश्वनी सुकेतिया योल चतैर थो होना चाहते हैं सुनी भूखू गीत तो जरूर इंजो सुनी भूखू गीत के सो जरूर होने दिन बाहर निकला निको छुको बाहर मनु कौन आया है बहुत प्यारे दे गीत है सो तो जरूर इस गीता जो तुझ तक पहुँच रहे है सुखेती साहब जरूर पहुंच ले तुझे तक। फिलहाल कार्यक्रम जो है थोड़ा करे हगो बढ़न दिन और अगली जानकारी तू वो की शेयर कर दें छो तो प्रदेश वैन ने जिला मादेश भी बैठक में के सो अधिकारी रे प्रति सांसद सख्त रुख गया सो अपना हुआ छो तो कांगड़ा में भी कड़े सवाल और तीखे समीक्षा भी उम्मीद थी छो तो लेकिन सोमवार जो धर्मशाला रहा माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आ छो तो केंद्रीय प्रायोजित योजना जो फाइलाथोन कड्डी करी के सो धरातल पर उतारने वे मामले में कांगड़ा जिला वे प्रशासन ने सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो भरोसा जीत लियो हा विभाग री प्रगति रिपोर्ट हेरने बाद किया सांसद इतने संतुष्ट नजरे छूरत हो सो तो जो सांसद इन कांगड़ा चंबर है सो इतने संतुष्ट नजर आए सो तो कि तिने पूरे प्रशासन जो बेहतरीन कामकाज व्यवस्था किया सो बधाई दिते और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो तो कि तुस वो तुंदे कमे वास्ते किया सो एप्रिशिएट करेगा अच्छा तुस वो तुंदे कमे वास्ते किया सो सराहना करेगा अच्छा है ना हर मुझे लगता कि हर फील्ड में हर एक फील्ड में के अश्रोत हूँ सो हर एक जगह के आ सो एप्रिशिएशन बड़ी ज़रूरी है जाए सो घर बोआ जाए बाहर दफ्तर बोआ जाए बाहर तो है जड़ी कम कर देन सो ओनर के ना सो जरूर तुझे एप्रिशिएट करना है ना एप्रिशिएशन तो आजकल मूल देने ओ मतलब ये लगता कि ओनर जो है लगता माल को लगता कि एडी बिरे चुगुस एडी बिरे गोआ ये हमें ना बुआ ती हमें ना बुआ वो बिना बुरे बुआ हमेशा शिकायत है क्या ना सोरन दिन है ना कभी खुश बच करे ना बोलते कि चलो आज इंदा वर्कर है सुले छूरा और 8 घंटे 8 से 10 घंटे अगर सुले रे हुआ कि 5 घंटे रे हो कि 6 घंटे रे हो तो इन्हें कुछ कमाओ बुना इच करे कोई कुर्सियाँ बेखुरा था ना बुना और अगर कुर्सियाँ बेखुरा तो कुर्सियाँ बाई करे भी तो तीन सोची जा करी बुनी दिमाग का हो गए चलो बुना सोता ही मतलब कुर्सियाँ भी बेकुर है ना तो खुश रहना बड़ा जरूरी जाए सो फैमिली बो घरे भी कभी कभी लगता कि है शायद कुछ ना कमावा है शायद कुछ ना करो है ना तो ये ना बोना चिंता जाए घर बोआ जाए घर तो बाहर बोआ सो तो एप्रिशिएशन की सो बड़ी ज़रूरी है सराहना की सो बड़ी ज़रूरी है हल्केरी है ना ताकि सो और ज़्यादा मोटिवेट बुझ करे क्या ना सो और बेहतरीन काम करना और बेहतरीन अपने आप जो बनान बहरहाल कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के सो चल रही सो तो और आइया अश्वनी सुकेतिया री फरमाइश में हूँ दिन सो तो सुनी भूखू गीत सुनी भूखू गीत तो सो गया है तुंदे वीडियो सेट में जरूर ब्रॉडकास्ट कर दे हिन बने रे जुड़े रे आरजे सचिन कपूर सो गी गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

ज़रूर है पूरी करनी है। और फिलहाल कुछ एक टेक्निकल इशू की सो एकदम चले आ, तो परिस्थिति भी है हिंदी शो तो लाइफ में के है ना, सो परिस्थिति भी कुछ इस प्रकार से होगी हिंदी की, तो सो की सो अचानक कुछ भी चीज़ कोई भी कोइंसिडेंस की सो तुम्हारे सामने बोल सकता है, पर हाल तो सो तैयार की सो रहना हाँ शो तो बिल्कुल तैयारी के ना, सो हमेशा अपनी पूरी बुना चिंदी और तैयारी के ना सो बेहतरीन तरीके होगी बुना चिंदी इन शो तो, कजो कि कुछ भी कोई भी चीज़ की सो कभी भी तुम्हारी लाइफ में किया सो एंटर पूछ सकते हैं, तुम्हारी लाइफ में किया सो इच सकते हैं।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हुनु कर दे निंदी अपनी गपा बहुत बहुत स्वागत है जनाब हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा आइया कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और तो सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम मंच कॉल कर सकते हैं नमस्कार परसराम योल चतैर मेरी फरमाइश है जिंदगी सोनी है सिंगर बिल्कुल बिल्कुल विशनदास सिंगर हिन और परसराम जी दी ए फरमाइशा परसराम जी ज़रूर तुंदी फरमाइश हो के सो है पूरा कर ले जिंदगी वाकई में परसराम जी सोनी ता हा बेहतरीन हा अच्छी हा लाडली आ प्यारे आ दुलारे आ है ना लेकिन इस जो है जीना के असु लेट शुरू करते हैं जहन तकर असु जिंदगी वे तौर तरीके के असु समझ इंदे ने तहने तकर के असु तो सो इंदा वापस गाने रा समा गया सो चली इंदा वापस गाने वा वापस गाने रे जो होड़ असु लगी बंदे है ना तो जिंदगी जो ना बड़ी कम उम्र में समझना कि असु बड़ा जरूरी हुंदा हा कि जिंदगी जीने वास्ते क्या सो सभियों इस धरती रे जो सभियों अटपटी गल बली सकते ने है गल्ला जो कि पैसा बहुत जरूरी है ना लेकिन ये कि पैसा सो गिना गाना और पैसा तुंदे कर्म किया सो बिना बदली सकता हा पैसा कमाना जरूरी है इस जिंदगी में रहना था और इति सोगी शोतों अच्छे कर्म कमाना के ना सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो है कड़ी कसेरा बुरा करूँ कर दें शो तो है हिम्मत सोचा या हिम्मत जाना कि उपरा कुछ पता ना लगू कर दिया या ये तो चल नॉर्मल है सो नॉर्मल कुछ नहीं है जो तो है करूँ कर दे सो सब नॉर्मल नहीं है और पैसा कमाना कि शो तो सो वाकई में टफ तब हुंदा है लेकिन समझ ने आऊँ दसू कर दूँ ना कि जिंद जिंदगी में तौर तरीके समझ इंदे गाने समय पूछ तौर तरीके की इंदे कर्म के न सो इंदे तौर तरीके हिन इंदे जो अच्छे कर्म हिन न शतो सो ही हगुरी मंजिल की सो तय कर दे हगुरा फैसला की सो तय कर दे हिन तो चलिए परशुराम जी की फरमाइश जिंदगी सोनी जिंदगी सोनी तो आई है ना शिकवे की करिए चलिए तो जरूर इस गीता जो कि सो है ज़रूर हुन ले तो सब बन रहे इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी लेके चलते हैं जी इस गीत तारी किनारी तो सब भी जो

0: শত এফএম ব্যান্ডে কিয়ানো দিশামলব 2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধরমশালা তো হেসা বি টিউন কর রো আর এক কার্যক্রম মে দি আপনি গপ্পা গেন সো লাইভ চল রিং কল করে সকদেন 7 0 8 8 7 0 9 পর তাক মকে ফিরে তু সু সবি শ্রোতা রা সবি হুনে আলে রা হাউ স্বাগত করনু হা और इस नंबर मंच कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत के सो तो होने सकते हैं नंबर में तू होगे शेयर करे हिन छो तो 7 0 8 8 8 7 0 9 पर चलिए चल देना और कार्यक्रम जो आगो बढ़न देन थोड़ा करी और अशो तो आजकल सब ट्रैक पर के सोगन देन और खासकर नागडल झील क्या नागडल लेक जितियो है अंग्रेजी में बोल दे अशो तो इड़ी तो है सब के सो जरूर गन देन है ना धर्मशाला भी धौलाधार पहाड़ी में स्थित नागडल झील छोतो तेरा इतिहास के सो बेहद प्राचीन और धार्मिक हाश होतो तेरे बारे में तो सुहा है जरूर दस ले लेकिन इन द्रोतागण के अनसो अस होगी कनेक्ट पूछ गया हिन पुछ दिन कौन बल्लू कर देन और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते
0: जी नमस्ते कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन अच्छा जी कंड बढ़िया कंड बगियाड़े थो है ना जी तुंदी गनारी ना सिग्नल घट बंदा शायद तो मुझे आवाज के सो क्लियर ना होने दे तुंदे और करे लुगरन अच्छा स्कूल लेके जे आई ना अच्छा जी आज कुछ खास पढ़ो स्कूल की रोजाना ही है या कुछ कुछ कुछ कुछ खास पढ़ो मेलो आज स्कूल है कुछ या चीज कुछ याद रहे याद रहे छोरे बहुत उसको तुम्हारी आवाज के सो क्लियर नहीं छू कर दे हाँ तो है दस सके कौन देने गीत होना पसंद कर ले हाँ जी बेटा माफ कर तुंदी आवाज मुझे लिटली क्लियर ना होने कर दे कौन देने गीत बोलूं देन माफ कर शो तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पे उन दा कुछ की आवाज वाकई में क्लियर ना होने कर दी थी ता उन दा सु करते शो तो धर्मशाला वे धौलाधार पहाड़ी में किया सो नागडल रा इतिहास बेहद प्राचीन धार्मिक और पौराणिक कथा थो किया सो जुड़ रहा शतम ए पवित्र ग्लेशियर झील समुन्द्र तल थो लगभग 4260 थो 4350 मीटर री ऊंचाई पर किया सो स्थित है शतो नागडल रा इतिहास हो सकते कि बहुत सारे श्रोतक हैं सो जानते हूँ नागडल का इतिहास और ठेरे उत्पत्ति भी कहानी के सो मुख्य रूप तो प्रसिद्ध भागसु नागरी कथा थों के सो जोड़ दे हा शो तू सब यो दसना चाहता सुखे रा संकट यानी कि पौराणिक कथा में के ठेरे अनुसार अगर हम गल करूँ शो तो हजारों वर्ष पहले के सो इस क्षेत्र में भयंकर सूखा किया हुक्का किया सो पैगो थो शो तो पानी री बूंद बूंद वास्ता किया सो हाहाकार किया सो मच गए थे शो तो तहने स्थानीय शासक दैत्य वाजा भागसु के सो अपनी प्रजा जो प्यास थो बचाने वा संकल्प के शो तो सो लियो थो पानी भी खोज मा वाजा भागसु धौलाधार री ऊंची पहाड़ी पर के असो पुजे गो थो शो तो जड़ी तिन्या चमत्कारी नागडल हुजु थो शो तो भागसुरे सोगे भागसु वे सोगे के शो तो सो कुछ शक्ति थी तिन्या अंदर है ना तिन्या अपनी मायावी शक्ति थो नागडल रा सारा पानी अपने आक छोटे दे मतलब तस समय री बुनी ने सतारी गल्ला ने है ना छोटे दे कमन कमडल में किया सो भरे लियो शो तो है ना और तसी जो थल्लारी और किया सो लेकरी लगी प्यूरे थी है लगी पै ही ना मतलब तशो तो जाने नाग वाजे हो नाग देवता सो वापिस लौटो कर देती है तो तहने तिन्या हेरो के त्यारा पवित्र डाल पूरी तरीके हो गई किया सो हुक्का पेगो क्रोधित पूजे करे नाग देवता के असो पानी वे पानी चुराने वाले वे पीछा करूं, है ना, और वर्तमान भागसु नाग नामक स्थान पर भागसु जो घेरी लियो, जड़ी आज भागसु नाग आ तड़ी भागसु जो किया सो घेरी लियो छो। तो दोनों रे बीच भयंकर युद्ध हुआ, नाग देवता रहे पर हार थो, भागसु गंभीर रूप थो कि सो घायल बुझ गयो, और सेरा कमंडल छुट्टी करी गया सो लुड़ी गो छो। तो जत्थो पानी री धार बहने लगी जो आज भागसु नाग झरना कहलंदी हा। मरदे समय भागसु अपनी गलती मनी और नाग देवता थो प्रार्थना करी कि सो ये सब पानी किया सो सेरी प्यासी प्रजा जो किया सो दीदीन, और ये सब तिंगे ता करो तो कि सेरी प्रजा किया सो प्यासे थे ता इन्हीं राजा किया सो ये करो तो शो। तो भागसु है निस्वार्थ भावना जो है, भागसु भी निस्वार्थ भावना जो हेरी करी नाग देवता के अश्वतों सो प्रसन्न हुए और तिंगे वरदान देता कि जल धारा हमेशा बहती रहनी है, और इस जगह जो राजा भागसु और नाग देवता रे संयुक्त नाथों यानी कि भागसु नाग वे रूपथों के सो जाने गाना है, ता भागसु नाग किया सो जाने गंदा है। तो ये तेरे पीछे जो कथा है जो कहानी है सो आज सचिन कपूर कोशिश करी कि इंदे श्रोता तक जरूर पूजा वेड़ी गुंजन धर्मशाला रे माध्यम थो। चलिए कार्यक्रम जो हगो बड़े इन श्रोतों और तो सब बढ़ रहे समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम मंच जुड़ी सकते हैं 7 0 8 8 7 0 9 8 पर। चलिए कार्यक्रम जो हगो बनंदा इन छोतो और कजो के अबे नाग देवता री गल लग रही थी, भागसु नाग री गल लग रही थी, है ना, तो इस बीच ता ये गीत किया सो जरूर हम बनंदा है हशोतो मेरे भाग सुनागा। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं तो सब आर जे सचिन कपूर सो के बन रहे हैं। तो कहानी सुनाए सो तो ये कहानी थो सुनने बाद ये गीत तो बनता ही बनता है सो तो, है ना।

Что-то FM-бенде Киану Дешамблаб 2 мегагерц по Веригунжен, Дарам Чала, то есть сабий джун гурор, и карикрам Сачин Капурцо, который был лайв в Хунугарде, на хинди, апни гапапни апни видео сет мата. Что-то он болдает, что жизнь бада куч кия, су сахандия. Жизнь кия су бада куч сахандия, кади хасандия, та кади фири руланде бия. Со жизнь кади би кия, что-то су парлер на माफ करा पैरेलल के सोना चलते हैं मतलब सामान्य तरीके हो गिना चलते हैं सो तो जिंदगी में मोड़ के नसो जरूर इंदे ने और हर किसी भी जिंदगी में जरूर इंदे ने और इंसान के सो जिंदगी तो सीखने वाला बहुत बहुत तजुर्बा के सो सीखते रहता दिन प्रतिदिन हर दिन के सो सीखते रहता और सो तो इंसान सोए जीविता जो कि हर दिन किया सो कुछ न कुछ जरूर सीखा सो तो है ना रोज जाए सो तुम दिन नौकरी आ जाए नौकरी तो बाहर भी किए सो चीज़ा सीखना चीन दिन सो तो बड़ा जरूरी है बहरहाल है नाक डाल रहे बारे की सो गलबात करूँ कर देती है सो तो लगभग धर्मशाला तो गल करूँ तो 25 से 30 किलोमीटर तो दूरी पर गया डल स्थित था सो तो लेकिन ये कोई सड़क मार्ग नहीं है है ना है सब जान दें जो इन गद्दी मनो के सो ट्रैक कर दें लेकिन जो अदर कम्युनिटी रे मन जो हूँ कर दें इस समय तीन हूँ दसो करता कि नागडल धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित एक उच्च पर्वत ग्लेशियर झील में क्या सोहा और लगभग 4,250 से 4,350 की ऊंचाई पर है सो तो केवल ट्रैकिंग मतलब पैदल ही चढ़ाई गई है सो तुसू चढ़ना पैने है सो तो है ना मुख्य धर्मशाला शहर तो ट्रैक की शुरुआत मैकलोडगंज तो की है सो तो सो पूछ गए मैकलोडगंज या भागसुनाग तो लाई लिया तो है ना तड़ी तो किया सो ट्रैक शुरू पूछ गए है सो तो नागडल तक पैदल चढ़ाई भी कुल दूरी की है सो लगभग 25 किलोमीटर तो ज़्यादा तक भी बुझी सकते हैं सो तो एग्जैक्टली तय है ना दस ही सकते लेकिन इतना इतना कि सो मोटा मोटा जो आइडिया सो और जो डाटा असूल है सो ये दसो करता कि 25 किलोमीटर तो अधिक रे दूरी अकतरफा अकतरफा गया सो 25 किलोमीटर रे दूरी की है सो रेंदे है एक बेहद कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है सो तो जतिमा गाने वाले इंद्रहार पास जो पार करना करना की सो बुंदा है इंद्रहार पास इंद्रहार जो भी किया सो इंद्रहार पास जो भी किया सो पार करना बुंदा है सो तो इसलिए दूरी पूरा करने में आमतौर पर दो तो त्राई दिन समय किया सो लगी गंदा है सो तो कुछ मन हो गया सो आज बैगा चलते हैं और रात रेंद और दत्ते के अंसू पूछ गए कि दो दिन समय किया सो तो है मनीगर चलना सो तो पहले दिन त्रिउंड दूए दिन लाका और त्रिये दिन इंद्रहार पास नागडल मकेसो पूछ गए है ना लेकिन जो इंदे लोकल ने जो इंदे अपने गद्दी समुदाय रे मन उनसो था सो है कि आज बैगा चले ना अगर है 9-10 बजे तो संजा स्टे और अगली बैगा की सो पुज गंदे है ना दो दिन रह समय की सो लगे ही गंदा है सो तो और बड़ा प्रसिद्ध धर्मशाला रे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डल लेक रे बारे में सो तो है दसो भी तेरा इतिहास की सो तू सो गया है शेयर करो हा बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो तो सब हूँ कर दे ना आरजे सचिन कपूर सो गए और हया कार्यक्रम जो थोड़ा करी और आगू बढ़ते हैं श्रोतों और उन्होंने दिन तू सभी श्रोता जो है प्यारे दिया गीत बनी रहा जुड़ी रहा असु सोगे वीडियो गुंजन रि गूंज सोगे।

0: चलिए शो, तो अब समय भी हो चुका, तो सभी तो इजाज़त लेने रहे, लेकिन गंदे गंदे आकर आखिरी फरमाइश है पूरी करना जरूर चल रहा है। श्रोता सुगी कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी। कौन बल्लून देन और कड़ी तो बल्लून देन
1: जो मैं कल आया था रिहान।
0: हेलो। हाँ जी कौन बल्लून देन और कड़ी तो बल्लून देन जी।
1: खुलेड़ा था बलून दा।
0: अच्छा क्या ना अच्छी तुंदा
1: रिहान।
0: रिहान जी कुंडने की थोड़ा पसंद कर ले।
1: मेरा खेनू बड़ा उस्ताद है।
0: ठीक है रिहान जी, दे इजाजत जरूर तुंदी फरमाइश पूरी कर ले।
1: ठीक है।
0: शोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही। बहरहाल हम सचिन कपूर ले लेने तुस तो इजाजत फेरी मोलते छिए थो 8 श्रोतो तुस सोगे कुछ एक और खास जानकारी लेकर इस कार्यक्रम थो हिंदी अपनी गप्पा थो अह लेंदे ने इजाजत। हंसते रहे मुस्कुराते रहे और माँ बाप की सेवा करते रहे, प्रकृति का ख्याल जरूर रखा। श्रोतो इन शब्द थो सचिन कपूर लेनो इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश की दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप देने की तैयारी तेज, करीब 17 लाख पृष्ठों को डिजिटल करने की दिशा में काम जारी। कांगड़ा से जम्मू के लिए जल्द शुरू हो सकती है हवाई सेवा। सरकार और संबंधित एजेंसियों के स्तर पर प्रक्रिया जारी। हिमाचल में छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 83 पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों के एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत। अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। हिमाचल के ड्रग कंट्रोल प्रशासन को राष्ट्रीय सम्मान। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता और नियामक व्यवस्था के लिए मिली उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश में रोगी मित्र रखने पर हाईकोर्ट की रोक। अदालत ने सरकार को नियमित स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था और नीति पर विचार करने को कहा। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का बनेगा नया खाका। प्रदेश के 145 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़कर युक्तिकरण की तैयारी। हिमाचल के 4 सरकारी गेस्ट हाउस में अब 24 कमरे ऑनलाइन बुक होंगे, किराया भी घटाया गया। हिमाचल प्रदेश की दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक डिजिटल आर्काइव पोर्टल विकसित किया जा रहा है। समाचार के अनुसार हिमाचल राज्य अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के लगभग 17 लाख पृष्ठों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया है कि इस दिशा में राज्य सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से काम किया जा रहा है। इसके तहत शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लोग ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस परियोजना में पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी खोज, अध्ययन और उपयोग को भी आसान बनाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखागार में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है। इनमें पुराने दस्तावेज, रिपोर्ट, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक पुस्तकें, गजेटियर और अन्य अभिलेख शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल संरक्षण से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाई जा सकेगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और विभिन्न शहरों से हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कांगड़ा जम्मू हवाई सेवा शुरू होती है तो हिमाचल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेषकर धर्मशाला, मैकलोडगंज और कांगड़ा घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए जम्मू से सीधा हवाई संपर्क यात्रा को आसान बना सकता है। समाचार में बताया गया है कि सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है और आने वाले समय में इस दिशा में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वर्तमान में सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हवाई सेवा शुरू होने पर समय की काफी बचत हो सकती है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSSC के लिए 25 सीटें, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के लिए 41 सीटें और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए 17 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा BA, BSSC, BCOM के लिए भी सीटें निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पात्र श्रेणियों के विद्यार्थियों को मिल सकता है। आवेदन के लिए निर्धारित आयु और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। समाचार के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर रखी गई है, जबकि मेरिट सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, टेस्ट सीरीज और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना है। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने का अवसर मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के LPG उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल रखा गया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग की अवधि 35 दिन थी। समाचार के अनुसार प्रदेश में कुछ स्थानों पर LPG कनेक्शन और सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में नए कनेक्शन पर रोक और सिलेंडर की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता 25 दिन के बाद अपना अगला गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। हालांकि समाचार में यह भी बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल इस मामले में कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। सरकार की ओर से ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत देने का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब गैस कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्धता को लेकर कई क्षेत्रों से शिकायतें सामने आ रही थीं। उपभोक्ताओं का कहना है कि नए कनेक्शन पर रोक के कारण कई परिवारों को परेशानी हो रही है। ऐसे में गैस की उपलब्धता और नए कनेक्शन की प्रक्रिया को सुचारू करने की मांग भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोल प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। समाचार के अनुसार प्रदेश के ड्रग कंट्रोल प्रशासन को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नियामक उत्कृष्टता, उद्योग सुविधा और दवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ड्रग कंट्रोल प्रशासन की टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश सरकार की मजबूत नियामक व्यवस्था और गुणवत्ता आधारित फार्मास्यूटिकल उद्योग विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिमाचल में फार्मा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में दवा निर्माण से जुड़े कई उद्योग कार्यरत हैं। ऐसे में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावी नियमन की जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोल प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। यह सम्मान हिमाचल के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में रोगी मित्र की तैनाती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। समाचार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स आधार पर रोगी मित्रों की तैनाती की योजना को अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि स्टाफ नर्स के बराबर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले करीब 1,000 लोगों को 15,000 रुपये प्रतिमाह के निश्चित वेतन पर अस्पतालों में तैनात करने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में पद भरने की मांग भी सामने रखी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा कि अस्पतालों में नियमित स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को भरने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेने के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। समाचार के अनुसार कोर्ट ने सरकार को आश्वासन दिया है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। अदालत ने संबंधित मामले में आगे की सुनवाई तक रोगी मित्रों की तैनाती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर युक्तिकरण की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 145 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग का उद्देश्य उपलब्ध शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती को अधिक व्यवस्थित करना है। इन स्कूलों की मैपिंग की जा रही है ताकि भविष्य में पदों का सृजन, पुनर्संयोजन और शिक्षकों की तैनाती जरूरत के अनुसार की जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि CBSE पैटर्न पर संचालित सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या और शैक्षणिक जरूरत के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता का वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी है। इसके लिए सभी जिलों के उपनिदेशकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया से यह पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक कितने शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता है। युक्तिकरण के दौरान प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, विषयवार जरूरत और अन्य आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा। इससे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। यह मामला प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, कर्मचारियों की नियुक्ति और आउटसोर्स व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 4 सरकारी गेस्ट हाउस में 24 कमरों की ऑनलाइन बुकिंग अब की जा सकेगी। प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए नई दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी गेस्ट हाउस के कमरों को ऑनलाइन बुक करने के लिए
1: पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
2: बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: क्या है?
1: क्या ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करिए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
0: मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

गणपति के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया

0: वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: इतने सारे पैसे?
2: Oh no!
1: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
3: सुनो।
2: Oh no!
3: मुझे 500 रुपए देना।
4: तो क्या हुआ?
3: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
4: दिख तो रहा है सही से।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे अपने घर पर। चलिए तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा बड़ा स्वागत है सभी का। आगाज हो चुका है श्रोतों कार्यक्रम का और अब हम आपको बताएंगे धर्मशाला का मौसम इस समय क्या बतला रहा है। तो श्रोतों इस समय की बात की जाए तो धर्मशाला का जो मौसम है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बता रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो धर्मशाला का मौसम इस समय बना हुआ है श्रोतों। और नमी की बात की जाए तो नमी जो है वो लगभग 73% के आसपास जो है वो बनी हुई है। तो आइए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और सचिन कपूर हूँ मैं, इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक जानकारियों के साथ जो है वो अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। हिमाचल के 4 सरकारी गेस्ट हाउस में 24 कमरे अब ऑनलाइन जो है वो बुक होंगे। श्रोताओं जी बिल्कुल आप सभी तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। श्रोताओं हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए जो है वो नई दिल्ली चंडीगढ़ और शिमला स्थित सरकारी गेस्ट हाउस के 24 कमरे ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो है वो उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इन कमरों का किराया भी सरकार ने 4,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये प्रति कमरा जो है वो प्रतिदिन सभी करो सहित जो है वो कर दिया है। श्रोताओं बताना चाहते हैं कमरे हिम अतिथि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। सरकार ने हिमाचल भवन और हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ तथा विली पार्क सर्किट हाउस शिमला के 24 कमरों को आम जनता के लिए जो है वो ऑनलाइन बुकिंग के लिए अधिसूचित किया था। श्रोताओं 24 घंटे पहले रद्द करने पर जो है वो 10% कटकर रिफंड हो जाएगा। यदि बुकिंग को चेक इन समय यानी दोपहर 12 बजे से 24 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो बुकिंग के लिए जो है वो जमा कमरे के शुल्क में से जो है वो 10% काटकर शेष राशि जो है वो वापस कर दी जाएगी। श्रोताओं वहीं चेक इन समय से 24 घंटे के भीतर बुकिंग रद्द करने पर कमरे का पूरा शुल्क काट लिया जाएगा श्रोताओं और कोई राशि वापस नहीं होगी। यदि किसी कारण से सामान्य प्रशासन विभाग बुकिंग रद्द करता है तो आवेदक को जमा कमरे का पूरा शुल्क जो है वो वापस किया जाएगा। श्रोताओं बुकिंग कमरे का किराया जो है वो 1200 रुपया रहेगा। इन 24 कमरों के अलावा हिमाचल भवन और हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विली पार्क सर्किट हाउस शिमला के अन्य कमरों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रोताओं इन कमरों का किराया 1200 रुपया प्रति कमरा प्रतिदिन सभी करो सहित ही रहेगा। उपलब्ध कमरों में से करीब 40% कमरों की बुकिंग जो है वो प्रत्येक कार्य दिवस दोपहर 12 बजे और शेष करीब 60% कमरों की बुकिंग शाम 5 बजे सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को

राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है। आज

शोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, इतिहास और कांगड़ी गद्दी जैसी स्थानीय बोलियों की मिठास अब आकाशवाणी के माध्यम से और अधिक मुखर हो सकती है। श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला को तकनीकी रूप से हाईटेक बनाने, स्थानीय कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने और वर्षों से अपनी आवाज़ का जादू बिखेरे रहे श्रोताओं, आकस्मिक उद्घोषक जिन्हें आरजे कहा जाता है या कैजुअल अनाउंसर भी हम कह सकते हैं कि हितों को लेकर जो है वो कलाकारों की एक प्रतिनिधि मंडल ने एक बड़ी और सकारात्मक पहल की। कलाकारों ने शिक्षा बोर्ड प्रांगण में कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर रजीव भारद्वाज से मुलाकात कर उन्हें एक अविस्तृत ज्ञापन सौंपा और आकाशवाणी को और अधिक अच्छा और जनोन्मुखी बनाने के लिए जो है वो वचनात्मक सुझाव दिए। श्रोताओं, प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया है कि उनकी ये पहल किसी टकराव के लिए नहीं बल्कि आकाशवाणी के उत्तीर्ण के लिए है। श्रोतों, विज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है श्रोतों की आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो और तकनीकी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाए। श्रोतों, कलाकारों ने सुझाव दिए कि कुल प्रसारण समय में से एक बड़ा हिस्सा स्थानीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित हो सके। श्रोतों, विशेषकर किसानवाड़ी समाचार और श्रोता सहभागिता फोन इन जिसको कहा जाता है जैसे कार्यक्रमों को कांगड़ी गद्दी और अन्य पहाड़ी बोलियों में प्रसारित किया जाए। श्रोतों, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए शोतो, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर। पंजाब में नशे के बढ़ते प्रभाव के बीच लुधियाना जिला के गाँव लुधियाना में जिला के गांव शोतों बुरजू से एक बेहद दर्दनाक मामला जो है वो सामने आया है। यहां तीन महीने की गर्भवती 25 वर्षीय महिला हरप्रीत कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शोतों मृतक के मायके वालों ने उसके पति जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा पर नशे की हालत पर मारपीट और उसकी हत्या करने का आरोप जो है वो लगाया है। शतों इस घटना में हरप्रीत के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की भी जो है वो मौत हो गई। शतों पुलिस ने मृतक की परिजनों की शिकायत के आधार पर जो है वो पति जसप्रीत सिंह और उसके दादा जोगिंदर सिंह को हिरासत में ले लिया। शतों थाना सुधार के प्रभावी कुलविंदर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए लुधियाना सिविल अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। शतों परिजनों के अनुसार हरप्रीत कौर अपने घर में लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान थी और कुछ समय पहले मायके चली गई थी। शतों रविवार को जसप्रीत उसे समझा कर वापस अपने घर ले आया था। परिजनों का कहना है कि उसने नशा छोड़ने का भरोसा भी दिलाया था। आरोप है कि सोमवार रात जसप्रीत नशे की हालत में घर पहुंचा और हरप्रीत के साथ कथित तौर पर बुरी तरह मारपीट की। परिजनों ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसका गला घोट दिया गया। शतों मृतक के परिजनों ने दावा किया है कि हरप्रीत के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उनका आरोप है कि घटना के बाद जसप्रीत ने मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। परिजनों ने सवाल उठाए कि यदि हरप्रीत ने आत्महत्या की थी तो उसका शव छत से नीचे किसने उतारा। इस घटना में हरप्रीत के घर में पल रहे अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। शोतों फिलहाल हरप्रीत कौर की मौत के मामले में पुलिस जांच जो है वो कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही ये स्पष्ट होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। मृतक के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन शोतों एक सवाल खड़ा होता है, क्या नशा परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या नशा वाकई में ही अपने परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम नशे में किसी की जान ले रहे हैं? किसी की भी नहीं, आप अपने ही परिवार के सदस्य को, अपने ही परिवार को, अपनी ही फैमिली को आप ख़त्म कर रहे हैं। वाकई में सोचता हूँ ये नशा जो है वो बहुत बड़े बड़े घरों को जला कर राख कर देता है, बहुत अच्छी ज़िंदगियों को जो है वो तबाह कर देता है। इसलिए इस नशे से दूर रहिए कोसों। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं इस गीत की ओर।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं रेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ, इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। आइए जी, जितने भी गणमान्य व्यक्ति मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से पुनः स्वागत अभिनंदन। नशे के खिलाफ छेड़े अभियान मोहतरमा। नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत शिमला पुलिस ने ठियोग में अफीम तस्करी के एक मामले की जांच के दौरान आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़ी 1.64 करोड़ रुपए से अधिक की चलांचल की वित्तीय संपत्तियों को जो है वो सीज किया है। शतो पुलिस थाना ठियोग में इस संबंध में FIR नंबर 77/2026 दिनांक 10 जून 2026 NDPS एक्ट की धारा 18 के तहत दर्ज की गई थी। शतो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राही घाट हॉस्पिटल रोड ठियोग स्थित आरोपी सोहन लाल की दुकान की तलाशी ली तो मौके पर 71 ग्राम अफीम बरामद हुई। शतो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सांक्ष्यों की जांच के लिए के आधार पर जो है वो कई संपत्तियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दायरे में एक आवासीय भूमि प्लॉट, एक कृषि भूमि प्लॉट, 2 मंजिला दुकान, 1 वाहन तथा विभिन्न बैंकों और डाकघर खातों में जमा धनराशि शामिल है। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 1.64 करोड़ आंका है। श्रोतों SSP शिमला गौरव सिंह का कहना है कि उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों और अन्य संशय के आधार पर उक्त संपत्तियों पर प्रथम मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से संबंधित पाई गई है। जांच में ये भी सामने आया है श्रोतों की आरोपी की घोषित या अज्ञात आय उसकी संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप नहीं थी। इसी आधार पर NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत संबंधित संपत्तियों को सीज किया गया। शतो जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। शतो बहुत प्यारा सा गीत सुना आप सभी ने, हमको दीवाना कर गए, लेकिन अब हम लेके चलेंगे आपको इस गीत की।

श्रोतों, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आप बहुत प्यारे प्यारे से गीत आप तक पहुंच रहे हैं श्रोतों, और इसी तरह से ये गीतों का सिलसिला चलता रहेगा। गीतों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, साथ ही साथ जानकारियों का पिटारा भी खुलता रहेगा श्रोतों। बिल्कुल, हम अक्सर ये मैसेज जो है, खासकर मैं अक्सर इस मैसेज को जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचाता हूँ श्रोताओं की। देखिए, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है, और आपकी प्रकृति सेफ है तो आप सेफ हैं, अन्यथा पल भर के झटके में जो है वो सब तहस नहस हो जाता है। पल भर के झटके में जो है वो इंटेलिजेंसी निकल जाती है, अमीरी निकल जाती है। पल भर के झटके में

है वो ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लोग मौत के घाट उतर जाते हैं श्रोतों। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप प्रकृति का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें श्रोतों। हम अक्सर कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति का ख्याल जो है वो अवश्य रखें, ज़रूर रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रकृति का ख्याल रखना श्रोतों। पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और प्लास्टिक ना फैलाएं श्रोतों, कूड़ा करकट जो है वो ना फैलाएं। इन खास बातों का ध्यान आप सभी ज़रूर रखें। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेडी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 2 और लोगों को जबरन गायब कर दिया है। इससे बलूच लोगों के गायब होने और प्रभावित परिवारों को जानकारी न मिलने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है। आप सभी के वीडियो सेट पर बहुत सी जानकारियों के साथ आप सभी श्रोता जो है वो रूबरू हो रहे हैं और साथ ही साथ श्रोताओं, गीत संगीत की ये जो लहर है ये भी बिल्कुल यूं ही चलती रहेगी आप सभी के रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में श्रोताओं, हम अक्सर बात करते रहते हैं प्रकृति की प्रकृति को जो है वो किस तरह से साफ सुथरा और बेहतरीन जो है वो हमने रखना है। ये मात्र किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है श्रोताओं और हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी का जो है वो कर्तव्य बन जाता है श्रोताओं कि प्रकृति का ख्याल हम सभी किस प्रकार से रखें। देखिए, अगर हम प्रकृति का ख्याल, प्रकृति हमारी माँ है श्रोताओं, है ना, हम अपनी माताओं का ध्यान जो है वो हम सभी बखूबी रखते हैं, है ना, उसी तरह से प्रकृति का ख्याल भी हम सभी को बखूबी रखना होगा श्रोतों। अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर हम श्रोतों आप शायद हम समझ भी ना पाए कि हम किन परिस्थितियों से गुजर सकते हैं, है ना। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का सिलसिला पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा श्रोताओं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और यूं ही चलती रहेगी बरसातें गीतों की भी और जानकारियों की भी श्रोताओं। तो नागडल के बारे में हम बातचीत कर रहे थे अपने लाइव के दौरान भी, हिंदी अपनी गप्पा में भी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के पास धौलाधार पर्वतमाला में स्थित नागडल श्रोतों, नागडल लेक एक बेहद खूबसूरत और ऊंचाइयों पर स्थित ये झील है श्रोतों। ये ट्रैकिंग जो ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैकिंग प्रेमी हैं, वो उनके लिए बहुत लोकप्रिय है श्रोतों। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप ख़राब मौसम में जो है वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको श्रोताओं, लेकिन इस गीत के बाद आप सभी यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा पिटारा।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम नाग डल झील ट्रैक के बारे में जो है वो बातचीत कर रहे थे। श्रोतों आप सभी को बताना चाहते हैं, श्रोतों धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पवित्र झील है ये, जो नाग देवता यानी नाग देवता को समर्पित है। ये अगस्त और सितंबर के महीने में जो है वो मणिमहेश यात्रा के आरंभ के समय श्रोतों तीर्थ यात्रियों के लिए जो है वो एक लोकप्रिय ट्रैक भी है श्रोतों, जहाँ वह स्नान करते हैं श्रोतों उस स्थान पर जाकर। ये झील भागसुनाग मंदिर से भी जुड़ी हुई है श्रोतों और इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल माना जाता है श्रोतों। कुछ लोग का कहना है कि नागडल ट्रैक बेहद खूबसूरत और यह मैक्लोडगंज से शुरू होकर इंद्रहार दर को पार करता है श्रोतों। धौलाधार पर्वतमाला में स्थित 7 झीलों का ट्रैक एक और रोमांचक ट्रैक है श्रोतों, जिसके लिए थोड़ी चुस्ती चाहिए, शरीर में थोड़ी सी फुर्ती चाहिए और मजबूत पैरों की आवश्यकता जो है श्रोतों वो होती है ना जी। देखिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे हम भी बढ़ाएंगे और ट्रैक के दौरान जो है वो बहुत सी बातों का ध्यान रखना है श्रोतों। जैसे कि आप सभी बाखूबी जानते हैं, ट्रैक करने से पहले में भी 2 दिन जो है वो लोकल जो है वो 2 दिन लगाते हैं। नागडल अगर आपने पहुंचना है तो 2 दिन लगाते हैं, लेकिन हो सकता है जो बाहर के टूरिस्ट हो श्रोतों वो 3 दिन भी लगा दें, है ना, क्योंकि ट्रैक जो है वो बहुत कठिन है, बिल्कुल खड़ी जिसको कह सकते हैं हम चढ़ाई है, पर्वत जो है वो चढ़ने पड़ते हैं श्रोतों, है ना। तो आप कैंपेनिंग का सामान जो है वो अपना पूरा लेके जाएँ श्रोतों, है ना। ट्रैक के पहले दिन के नाश्ते से लेकर अंतिम दिन के नाश्ते तक सभी भोजन जो है वो ज़रूर पूरा सामान जो है वो ज़रूर डालें श्रोतों। ट्रैक के दौरान सभी प्रकार के आवास ट्रैकिंग टाइप टेंट ये सभी चीज़ें जो हैं वो श्रोतों ज़रूर डालें, है ना जी। स्लीपिंग बैग हो गए, स्लीपिंग मैट्स हो गए श्रोतों, इन सभी चीज़ों किचन टेंट हो गए, स्टूल और टेबल के साथ डाइनिंग टेंट और बाथ टेंट शामिल ज़रूर करें श्रोतों। तो आप सभी अगर यात्रा करने जाएं तो इन चीज़ों का खास विशेष ध्यान जो है वो श्रोतों ज़रूर रखें। बहरहाल आप सभी बने हुए समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। तो कहते हैं ना श्रोतों की ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये गीत और ये मूवी बाकी में इसको जितनी बार सुने श्रोतों उतनी बार कम है और ये गीत अपने आप में बहुत बहुत बहुत प्यारा है श्रोतों। तो आइए आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो यूं भी श्रोतों परेशानियों से घिरी पड़ी हुई है। तो इन्जॉय करते हैं ना वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आइए कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं और इसी प्रकार से गीत संगीत जो है वो यूं ही चलते रहेंगे। श्रोतों गीत संगीत का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस गीत की ओर।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का।

0: अभी क्या है?
1: क्या है ये?
2: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
3: एक नई आदत अपनाते हैं, जब तक डस्टबिन ना मिले
2: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करें प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अबे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया।
0: मेरा गेम ओवर।
4: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरे टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे, एक काम करती हूँ बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
7: दिख तो रहे सही से।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। ये नाचीज सचिन कपूर आप सभी के साथ इस समय बिल्कुल बना हुआ है, बैठा हुआ है। सिद्धबाड़ी में इस समय जो है श्रोतों को बारिश लगी है, अन्य जगहों पर हो सकता है कि बारिश पड़ रही है श्रोतों, लेकिन एग्जैक्टली सिद्धबाड़ी का हम आपसे डाटा जो है वो रूबरू कर रहे हैं बारिश का, कि बिल्कुल बारिश जो है वो इस समय यहाँ पर लगी हुई है श्रोतों। और कहते हैं ना कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के झरने, यहाँ के नदी, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के नाले, यहाँ का नहीं है कोई थोर, और मेरा धर्मशाला है इतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत नहीं है कोई और। तो चलिए श्रोतों, 7:45 हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में, सांसद अनुराग ठाकुर सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित, और प्रदेश में धीमा पड़ा मॉनसून 14 सितंबर से फिर पकड़ेगा रफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री और रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान, कौशल, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और चरित्र निर्माण पर भी केंद्रित होना चाहिए। राज्यपाल आज सोलन जिला के बद्दी में ICFAI विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों से युवाओं को केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि अवसरों व संसाधनों के सृजनकर्ता के रूप में तैयार करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति और पांगी में लेह लद्दाख के हानले जैसा खगोलीय केंद्र स्थापित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र प्रसाद से मुलाकात के दौरान ये मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में खगोलीय अनुसंधान और अवलोकन के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं और विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान में रुचि विकसित करने के अवसर मिलेंगे, साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सतत और ज्ञान आधारित पर्यटन के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने लैवेंडर की डेमोंस्ट्रेशन साइट्स के विस्तार के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा। डॉ. जितेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान बंद करना, लोगों को नौकरी से निकालना और जन सुविधाओं में कटौती करना प्रदेश सरकार का प्रमुख काम रह गया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति ने प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से सड़कों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और सरकार की इस विफलता के खिलाफ भाजपा सितंबर महीने में प्रदेश भर में 200 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी। सिरमौर जिला के धौलाकुआ में आज आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुनियोजित तरीके से पूर्व भाजपा सरकार में शुरू हुए विकास कार्यों को रोका और चलते हुए संस्थानों को बंद किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी कई संस्थान बंद किए गए जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा।
2: कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का जोर जारी है। पिछले महीने पार्टी ने लगभग 200 स्थानों के ऊपर धरना प्रदर्शन किया। सितंबर के महीने में भी 200 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है और उसी कड़ी में आज धौलाकुआ में एक प्रदर्शन किया जाए। और प्रदेश की जनता, नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस ने जिस तरह से दुखी किया उसके कारण जनता सड़कों के ऊपर इलाज कराने के लिए सबको पौंटा की तरफ भागना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इन संस्थानों की तालाबंदी को लेकर जबरदस्त आक्रोश के अंदर है।
1: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर की ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के गांव टिक्कर और डुढ़ाना का दौरा करके स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व 3.5 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के सभी गांवों की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा और क्षेत्रवासियों की अन्य मांगों को भी चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने सुनील शर्मा बिट्टू को बारिश के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को अतिशीघ्र आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। टिक्कर वासियों ने एम्बुलेंस रोड की मांग रखी, जिसके लिए सुनील शर्मा बिट्टू ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमीन संबंधी दस्तावेज तैयार करने के दिशा निर्देश दिए ताकि एम्बुलेंस रोड का काम शुरू किया जा सके। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
4: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
3: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध है।
4: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को उत्कृष्ट संसदीय योगदान के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में मूल रिपोर्टों की प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन की श्रेणी में दिया गया। अनुराग ठाकुर वर्ष 2024 से कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए जूरी सदस्यों का आभार जताया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। अनिरुद्ध सिंह आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुग्गर में छात्राओं की 4 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने विजेता टीमों को सम्मानित भी किया। कांगड़ा जिला में यातायात नियमों के पालन और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने रात में नाकाबंदी और गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा पुलिस दिन भर जिले के अलग अलग स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस की इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
5: दिन भर सड़कों में यातायात अवेयरनेस के लिए नाकाबंदी की जा रही है और जो ज्यादा वायलेशन करता है उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी इशू किए जा रहे हैं। इवनिंग के टाइम में लगातार पुलिस की नाकाबंदी रहती है और रात्रि के समय में भी गश्त और नाकाबंदी हमने बढ़ाई है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में चोरी की घटनाएं रोकने और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, एनडीपीएस का डिटेक्शन के लिए कोई एनडीपीएस का तस्करी तो नहीं हो रही है, चरस की तस्करी हो रही है या चिट्टे का तस्करी हो रही है, उस चीज को रोकने के लिए लगातार पुलिस की नाकाबंदी और लगातार पुलिस की गश्त जारी रखी जा रही है। सभी अधिकारी नाकाबंदी पे भी जाते हैं और रात्रि चेकिंग के लिए भी जाते हैं।
1: प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 सितंबर तक राज्य में मॉनसून धीमा बना रहेगा। विभाग ने 14 और 15 सितंबर को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं के चलते 64 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। सर्वाधिक 31 सड़कें मंडी जिला में अवरुद्ध हैं, जबकि कुल्लू में 11, कांगड़ा में 10 और सिरमौर जिला में 5 सड़कें बंद हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के लिए 15 से 30 साल के युवा माई भारत पोर्टल पर 30 सितंबर तक अपना पंजीकरण कर सकेंगे। प्रदेश के युवा सेवाएं व खेल विभाग के विशेष सचिव नवीन तंवर और माई भारत युवा कार्यक्रम व भारत सरकार के खेल मंत्रालय के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने आज शिमला में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से चुने गए युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत पर अपने आइडिया रखने का मौका मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का विश्वविद्यालयों से युवाओं को अवसरों और साधनों के सृजनकर्ता के रूप में तैयार करने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति और पांगी में खगोलीय केंद्र स्थापित करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में। सांसद अनुराग ठाकुर सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित। और प्रदेश में धीमा पड़ा मॉनसून, 14 सितंबर से फिर पकड़ेगा रफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो अब आप सभी से मैं भी लेता हूँ इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन को यूँ ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए और इस नाचीज़ की आवाज़ को भी यूँ ही प्यार करते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: क्या है?
1: क्या ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गई। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते हैं, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते हैं।

0: ऐसे तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करें प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
2: अबे चल आ जा।
0: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
4: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल है?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सारे पैसे?
5: Oh no!
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh no!
6: मुझे 500 रुपए देना।
5: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
5: दिख तो रहा है सही से।

हिमाचल प्रदेश की दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप देने की तैयारी तेज। करीब 17 लाख पृष्ठों को डिजिटल करने की दिशा में काम जारी। कांगड़ा से जम्मू के लिए जल्द शुरू हो सकती है हवाई सेवा। सरकार और संबंधित एजेंसियों के स्तर पर प्रक्रिया जारी। हिमाचल में छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 83 पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों के एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत। अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। हिमाचल के ड्रग कंट्रोल प्रशासन को राष्ट्रीय सम्मान। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता और नियामक व्यवस्था के लिए मिली उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश में रोगी मित्र रखने पर हाईकोर्ट की रोक। अदालत ने सरकार को नियमित स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था और नीति पर विचार करने को कहा। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का बनेगा नया खाका। प्रदेश के 145 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़कर युक्तिकरण की तैयारी। हिमाचल के 4 सरकारी गेस्ट हाउस में अब 24 कमरे ऑनलाइन बुक होंगे। किराया भी घटाया गया। हिमाचल प्रदेश की दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक डिजिटल आर्काइव पोर्टल विकसित किया जा रहा है। समाचार के अनुसार हिमाचल राज्य अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के लगभग 17 लाख पृष्ठों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया है कि इस दिशा में राज्य सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से काम किया जा रहा है। इसके तहत शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लोग ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस परियोजना में पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी खोज, अध्ययन और उपयोग को भी आसान बनाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखागार में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है। इनमें पुराने दस्तावेज, रिपोर्ट, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक पुस्तकें, गजेटियर और अन्य अभिलेख शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल संरक्षण से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाई जा सकेगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और विभिन्न शहरों से हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कांगड़ा जम्मू हवाई सेवा शुरू होती है तो हिमाचल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेषकर धर्मशाला, मैकलोडगंज और कांगड़ा घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए जम्मू से सीधा हवाई संपर्क यात्रा को आसान बना सकता है। समाचार में बताया गया है कि सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है और आने वाले समय में इस दिशा में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वर्तमान में सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हवाई सेवा शुरू होने पर समय की काफी बचत हो सकती है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSSC के लिए 25 सीटें, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के लिए 41 सीटें और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए 17 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा BA, BSSC, BCOM के लिए भी सीटें निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पात्र श्रेणियों के विद्यार्थियों को मिल सकता है। आवेदन के लिए निर्धारित आयु और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। समाचार के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर रखी गई है, जबकि मेरिट सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, टेस्ट सीरीज और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना है। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने का अवसर मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के LPG उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल रखा गया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग की अवधि 35 दिन थी। समाचार के अनुसार प्रदेश में कुछ स्थानों पर LPG कनेक्शन और सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में नए कनेक्शन पर रोक और सिलेंडर की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता 25 दिन के बाद अपना अगला गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। हालांकि समाचार में यह भी बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल

इस मामले में कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। सरकार की ओर से ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत देने का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब गैस कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्धता को लेकर कई क्षेत्रों से शिकायतें सामने आ रही थीं। उपभोक्ताओं का कहना है कि नए कनेक्शन पर रोक के कारण कई परिवारों को परेशानी हो रही है। ऐसे में गैस की उपलब्धता और नए कनेक्शन की प्रक्रिया को सुचारू करने की मांग भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोल प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। समाचार के अनुसार प्रदेश के ड्रग कंट्रोल प्रशासन को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नियामक उत्कृष्टता, उद्योग सुविधा और दवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ड्रग कंट्रोल प्रशासन की टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश सरकार की मजबूत नियामक व्यवस्था और गुणवत्ता आधारित फार्मास्यूटिकल उद्योग विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिमाचल में फार्मा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में दवा निर्माण से जुड़े कई उद्योग कार्यरत हैं। ऐसे में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावी नियमन की जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोल प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। यह सम्मान हिमाचल के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में रोगी मित्र की तैनाती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। समाचार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स आधार पर रोगी मित्रों की तैनाती की योजना को अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि स्टाफ नर्स के बराबर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले करीब 1,000 लोगों को 15,000 रुपये प्रतिमाह के निश्चित वेतन पर अस्पतालों में तैनात करने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में पद भरने की मांग भी सामने रखी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा कि अस्पतालों में नियमित स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को भरने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेने के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। समाचार के अनुसार कोर्ट ने सरकार को आश्वासन दिया है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। अदालत ने संबंधित मामले में आगे की सुनवाई तक रोगी मित्रों की तैनाती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर युक्तिकरण की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 145 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग का उद्देश्य उपलब्ध शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती को अधिक व्यवस्थित करना है। इन स्कूलों की मैपिंग की जा रही है ताकि भविष्य में पदों का सृजन, पुनर्संयोजन और शिक्षकों की तैनाती जरूरत के अनुसार की जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि सीबीएसई पैटर्न पर संचालित सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या और शैक्षणिक जरूरत के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता का वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी है। इसके लिए सभी जिलों के उपनिदेशकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया से यह पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक कितने शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता है। युक्तिकरण के दौरान प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, विषयवार जरूरत और अन्य आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा। इससे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। यह मामला प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, कर्मचारियों की नियुक्ति और आउटसोर्स व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 4 सरकारी गेस्ट हाउस में 24 कमरों की ऑनलाइन बुकिंग अब की जा सकेगी। प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए नई दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी गेस्ट हाउस के कमरों को ऑनलाइन बुक करने की सुविधा उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कमरों का किराया भी कम किया गया है। किराया 4,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन कर दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग हिम अतिथि पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। बताया गया है कि हिमाचल भवन नई दिल्ली, हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और विली पार्क सर्किट हाउस शिमला के कमरों को ऑनलाइन बुकिंग सुविधा से जोड़ा गया है। इन कमरों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। बुकिंग रद्द करने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के अनुसार शुल्क में कटौती के बाद राशि वापस करने का प्रावधान भी रखा गया है। आज के समाचार

0: अपनी तो खा तो जब तक डस्टबिन ना मिले कशम ने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गई। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
1: एक नई आदत अपनाते जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: वैसे तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करिए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अरे चल आ जा।
0: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
4: रुको, सोचो और एक्शन लो। शंकर

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: तो ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत करने के लिए।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इतने सारे पैसे?
5: Oh, no.
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। hey. एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh, no.
6: मुझे 500 रुपए देना।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा।
7: hey.
6: ये तो 100 रुपए है।
5: दिख तो रहा है सही से।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आरज़ू, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: क्या ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा ने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गई। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते हैं, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते हैं।

0: अच्छा जो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
2: अरे चल आ जा।
0: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
4: रुको, सोचो और एक्शन लो।

उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत करने के लिए।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सारे पैसे?
5: Oh, no.
4: मेरी ड्रेस में 500 रुपए कम पड़ रहे थे। एक काम करती हूँ, बहाना मार के इससे 500 रुपए मांग लेती हूँ।
6: सुनो।
5: Oh, no.
6: मुझे 500 रुपए देना।
5: तो क्या हुआ?
6: मुझे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। ये तो 100 रुपए हैं।
5: दिख तो रहा है सही से।

मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल।

का जुनून।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: नहीं,
0: ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।